मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद की मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र स्मिता। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।

भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी

0: ने codis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में आइए सुनते हैं सबसे पहले समूह स्वर में ये देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। वंदना में आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये भक्ति रचना। वंदना में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वरों में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भजन। वंदना का समापन अब हम कर रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

0: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। इस भजन के साथ ही आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम आपको आज सुनवा रहे हैं जन्माष्टमी विषय पर यतीन्द्र चतुर्वेदी के विचार।
1: धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति वात्सल्य दर्शन श्रृंगार योग भोग तप राजनीति और

0: दुष्टों दानवों का संहार करने के लिए कूटनीति। यदि इन सब का समावेश एक ही चरित्र में किया जाए तो एक ही चित्र, एक ही छवि हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी अंतर आत्मा में प्रतिबिंबित होती है और वो छवि है, वो चित्र है आनंद कंद, योगीराज, रास रासेश्वर, श्री गोपाल, मदन मोहन, द्वारकानाथ श्री कृष्ण की। कहा गया है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात साधु जनों के कल्याण के लिए, दुष्कृत्यों के विनाश के लिए और धर्माचरण की स्थापना के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। ऐसे ही प्रयोजन की सिद्धि और सार्थकता के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। अवतरण हुआ उस अजन्मा महामानव का जिसने संसार को प्रेम और मानवता का संदेश दिया, कर्म के महत्व को जनमानस में प्रतिपादित किया, गीता में अपने उपदेश थे जीवन का संदेश दिया उस महामानव ने जिसे हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, जिसका वेणुनाद आज भी भारतीय परिवेश में गुंजायमान है और जो हमें अनंत आनंद की प्राप्ति कराता है। कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ विद्वानों के अनुसार सम्मोहित करने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला आनंद है। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरन। विद्वान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को चार भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम बाल कृष्ण के रूप में, द्वितीय युवा श्री कृष्ण लीलाधर रास रासेश्वर मदन मोहन वेणुनाथ से गोपियों के सखा गोपी कृष्ण के रूप में, कंस चाड़ूर और मुष्टिक का वध करने वाले कंस निकंदन के रूप में, तीसरा गीता के कृष्ण और चतुर्थ द्वारकानाथ यानी द्वारकाधीश कहलाए। सभी रूपों में धर्म और भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं श्री कृष्ण। इंद्र के कोप से ब्रज को बचाने वाले, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने वाले, यमुना के किनारे रास रचाने वाले निष्काम कर्मयोगी श्री कृष्ण, प्रेम का संदेश देने वाले श्री कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो समूचे ब्रजमंडल में हर्ष की लहर दौड़ गई। अनूठो जायो ललना ने यमुना पे सुने आई, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, आई आई नंद जू की पौर बधायो लाई मालिनिया। इतनी प्रसन्नता, इतना हर्ष, इतना उल्लास, इतना उन्माद। कृष्ण का जीवन चरित्र कृष्ण के संदेशों से आज भी हमें अनुप्राणित करता है। वे दीन दुखियों के सहारे हैं, वे जग के पालनहारे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वे राधा के श्याम हैं, वे मीरा के नटनागर हैं, वे सूर के गोपाल हैं, वे महाप्रभु वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के इष्ट हैं, जिनके श्री चरणों में नमन करने से ही अनेक भक्ति संप्रदाय अस्तित्व में आ गए। श्री कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय बना। किसी शायर ने कहा है, कन्हैया जन्म लेने जा रहे हैं, मिजाज कंस में हलचल मची है। भले ही कंस आज नहीं है, पर आज भी कंस का मिजाज, कंस वृत्ति विद्यमान है। अतः श्री कृष्ण की, उनके जीवन चरित्र की आज भी आवश्यकता है। आज भी हमें रसखान की आवश्यकता है, जिन्होंने गाया, दूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी अति सुंदर चोटी। किसी ने कहा है, क्रूर आतंकी अंधेरे, जिंदगी को मौत घेरे, कंस के पहरे घनेरे, तो जन्म ले फिर से कन्हैया, प्रार्थना करें, राधिका के सांवरे की अर्चना करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत जन्माष्टमी विषय पर यतीन्द्र चतुर्वेदी के विचार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय है नींबू वर्गीय पौधों में कीट नियंत्रण। जानकारी दे रहे हैं श्री सोहन सिंह।

0: किसान भाइयों, नींबू प्रजाति के पौधे सदाबहार होते हैं। इन पर अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में आर्थिक हानि होती है। अगर समय समय पर कीट नियंत्रण के उपाय अपनाए जाएं, तो होने वाली संभावित हानि से बच सकते हैं। नींबू का सिला नींबू प्रजाति के सभी पौधों का प्रमुख कीट है। इस कीट के शिशु गोल, चपटे और नारंगी पीले रंग के और प्रौढ़ भूरे रंग के होते हैं। इस कीट की दोनों ही अवस्थाएं पत्तियों और टहनियों से रस चूसती हैं, जिससे पौधे धीरे धीरे पीले पड़कर अंत में सूख जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिशु एक प्रकार का शहद जैसा स्राव छोड़ते हैं, जिससे पौधों पर काली फफूंद जमने लगती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। यह कीट एक प्रकार के विषाणुओं को भी फैलाता है। यह कीट साल भर सक्रिय रहता है। इस कीट के प्रभाव से फसल की पैदावार और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, फलस्वरूप फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर मेटासिस्टा 25 ईसी या 500 मिलीलीटर रोगर 30 ईसी का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि पौधों में फूल बनने की अवस्था में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करें। इसी तरह सफ़ेद और काली मक्खी पौधों को नुकसान पहुंचाती है। सफ़ेद मक्खी के शिशु चपटे हल्के पीले रंग के होते हैं और इनके शरीर पर रोएं पाए जाते हैं। यह इसकी प्रमुख पहचान होती है। प्रौढ़ मक्खी के शरीर और पंखों पर सफ़ेद रंग का चूर्ण जमा हो जाता है। काली मक्खी के शिशु कांटेदार, चपटे, अंडाकार, गहरे भूरे या काले रंग के और प्रौढ़ हल्के नीले रंग के होते हैं। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही मुलायम पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे ये पत्तियां पीली पड़कर मुड़ने लगती हैं और अंत में सूख कर गिर जाती हैं। मक्खियों के शिशु पत्तियों की निचली सतह पर चिपके रहकर विकसित होते हैं। इस मक्खी के नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर इंडोसल्फान या 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह छाल खाने वाली सूढ़ी प्राय दिखाई नहीं देती है, लेकिन जहाँ पर टहनियाँ अलग हो जाती हैं, वहाँ पर इसका मल और लकड़ी का बुरादा जाले के रूप में दिखाई देने लगता है। यह सूढ़ी दिन के समय तने के अंदर सुरंग बनाती है और रात को बाहर निकलकर जाल के अंदर रहकर छाल को खाती रहती है और पौधों की खुराक नली को खाकर नष्ट कर देती है, जिससे पौधों के दूसरे भागों में पोषक तत्वों का पहुंचना रुक जाता है, जिससे ऊपर का भाग सूखने लगता है और तेज हवाएं चलने पर प्रभावित भाग टूटकर गिरने लगते हैं। जहाँ पर बगीचों की अधिक समय तक देखभाल नहीं की जाती है, वहाँ पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इस कीट के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए सितंबर अक्टूबर के माह में 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर सुराखों के चारों तरफ छाल पर लगाना चाहिए, जिससे कीट नियंत्रित हों। बगीचों की समय समय पर कटाई छटाई करके बिल्ला करते रहना चाहिए, जिससे हवा और धूप का आवागमन होता रहे। जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और पैदावार भी निश्चित रूप से अधिक मिलेगी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय था नींबू वर्गीय पौधों में कीट नियंत्रण। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है।

0: मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो 8700104242।
1: ओ 8700104242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700104242 पर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सर मैं स्टूडियो 5।
1: स्वागतं कृतवन्तौ। उभौ देशौ आगामिषु पञ्चषु वर्षेषु द्विपक्षीयव्यापारं द्विगुणीकर्तुं महत्वाकाङ्क्षिणं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स् मुख्यन्यायाधीशमञ्चस्य आतिथ्यं करिष्यति। अस्मिन् मञ्चे ब्रिक्स् सदस्यदेशानां सहभागिदेशानां च मुख्यन्यायाधीशाः सर्वोच्चन्यायालयानाम् अध्यक्षाः तथा वरिष्ठाः न्यायिकनेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अयं मञ्चः सहभागिन्यायाधीशानां मध्ये संवादाय अथ न्यायवितरण अन्ताराष्ट्रियविवादसमाधानप्रौद्योगिकी सततविकासचेत्येतेषां सम्बद्धानां समकालिकप्रकरणानां विषये विचारविनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटनदिवसे विभिन्नानां न्यायिकप्रतिनिधिमण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपालदेशस्य जलाप्लावप्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु सहायोद्धारकार्येषु सहायतां कर्तुम् आपदुद्धारसामग्रीः समेत्य द्वे विमाने पुनः प्रेषिते। आपदुद्धारसामग्र्यः नेपालस्य विज्ञानप्रौद्योगिकी नवोन्मेषमन्त्रिणे महावीरपुन् इत्यस्मै समर्पिताः। भारतर्तु विज्ञानविभागेन अद्य मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीयस्पर्धायां भारतं हांगकांग दलं 37.1 धावनाङ्कैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनोसिस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जाँच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान

0: बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्त्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने चीन की हांगकांग टीम के विरुद्ध महिला क्रिकेट एशिया कप के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर आप सुन सकेंगे गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की होगी। 7:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुन सकेंगे मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी। सुबह 8:30 पर आप आनंद लेंगे सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुमार सानू के गाए कुछ गीत। 9:00 सुबह आप सुन सकते हैं सूचनाओं और समाचारों पर आधारित फिल्मी कार्यक्रम, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भरत नायक का सितार वादन, राग होगा मियां की तोड़ी। आपके साथ तबला पर संगत करेंगे विकास विपट। सुबह 10:00 आप सुन सकेंगे जिले की चिट्ठी, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर आप पुनः आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आपकी ही पसंद के फरमाइशी गीत।

सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हमारी पहली सभा में सभी कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारे शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से।

0: थे। ये कार्यक्रम छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। श्रोताओं, 6 बजे आप सुन सकेंगे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। ये कार्यक्रम हमारे ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगी और आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे जन्माष्टमी और PM स्वनिधि योजना। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत एक वार्ता भी सुनवाई जाएगी। विषय होगा जब अंधकार के बीच जन्मा प्रकाश। जानकारी देंगी श्रीमती अनीता चौधरी। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे खेल जगत। रात 10 बजे आप पुनः सुन सकेंगे अपनी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर आप सुनेंगे राग रंजनी। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, धार्मिक पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना को और मजबूत बनाने की योजना। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कल शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में आज जन्माष्टमी का उल्लास। 29 ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर श्री कृष्ण पर्व के आयोजन। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, पन्ना सतना में नदियों में बाढ़ की स्थिति। नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के विस्तार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल गुजरात में द्वारका में भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं देवस्थानों पर सहज एवं सुगम आवागमन, श्रद्धालुओं के ठहरने, उनकी सुरक्षा और पर्यटकों की वृद्धि को देखते हुए वहां सभी जरूरी अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 20 गुना बढ़ गई है। वर्तमान में लगभग 10 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री उज्जैन आ रहे हैं।
1: जिस प्रकार से तीर्थाटन का मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिसाद मिला है, अकेले उज्जैन में बाबा महाकाल के कारण से बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु दर्शनार्थी लगभग 20 गुना बढ़े हैं। आज की स्थिति में 10 करोड़ से ज्यादा यात्री उज्जैन आ रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी लगातार उस दिशा में काम कर रही है, इसलिए हमारे सभी देवस्थानों पर सुव्यवस्था स्थापित करके यात्रियों के लिए सुगम आवागमन, रहने सहने की व्यवस्था, देवस्थान पे प्रॉपर जो जरूरतें उन प्रकार के निर्माण कार्य।
0: डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर में एक निजी कंपनी की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट शुरू करेंगे। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह देश की एक ही स्थान पर स्थित सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। यहां 220 केवी से 1200 केवी तक के ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे और हर महीने 35 ट्रांसफार्मर तैयार करने की क्षमता होगी। इकाई से 2000 से अधिक

0: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीहोर में बनने वाले ट्रांसफार्मर देश के साथ वैश्विक बाजारों में भी भेजे जाएंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ये समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आरसीवीवी वीपी नरोहना प्रशासन एवं प्रबंधक की अकादमी भोपाल में होगा। इस अवसर पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, शैक्षणिक नवाचारों को बढ़ावा देने और विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों को शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। समारोह में विगत वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दो शिक्षकों शीला पटले और भेरूलाल ओसारा को समारोह में शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र तथा सम्मान राशि प्रदान कर विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बना है। जन्मोत्सव को लेकर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला को फूल बंगले की तर्ज पर भव्य रूप से सजाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बार भी प्रतिवर्ष की तरह सपरिवार रात 12 बजे होने वाली महाआरती में शामिल होंगे और भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करेंगे। पन्ना में भगवान जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान जुगल किशोर सरकार का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। प्रदेश के 29 ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर श्री कृष्ण पर्व के आयोजन रखे गए हैं। आयोजन उज्जैन के सांदीपनी आश्रम और नारायण धाम धार के अमझेरा तथा रायसेन के जामगढ़ जैसे श्री कृष्ण से जुड़े प्रमुख स्थलों पर विशेष कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में मटकी बांसुरी श्री कृष्ण की झांकी और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुरैना में श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में भव्य मटकी फोड़ महोत्सव में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों की गोविंदा टोलियां भाग लेंगी। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोन्स कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी। इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। भारत ने हांगकांग में चीन के खिलाफ गुरुवार को महिला एशिया कप 2026 के 7वें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की। इसी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी 48 गेंदों में 74 रन की साझेदारी की। इसके जवाब में चीन 16 ओवर में 2 गेंदों में सिर्फ 56 रन पर सिमट गई। शीर्ष स्थान पर बने रहते हुए भारत 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा। वहीं पाकिस्तान अपना पहला मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। एम्प्लॉयज प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने योग्य संस्थानों से विश्वास 2026 पहल के तहत EPF से जुड़े नुकसान के लंबे समय से लंबित विवादों को काफी कम दरों पर निपटाने का आग्रह किया है। प्रदेश में खजुराहो पन्ना सतना सहित पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। कल 9 स्थानों पर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। खजुराहो एयरपोर्ट पर 178, पन्ना में 164, रामपुर बागेलान में 130, अमरपाटन में 129, देवनगर में 128, मझगांव में 122 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि छतरपुर सागर रायसेन नरसिंहपुर सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर और बालाघाट समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। पन्ना जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अमानगंज में मीढ़ासन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पन्ना की पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने बताया कि किलकिला नदी के विकराल रूप से जलमग्न हुए धाम मोहल्ले में फंसे 12 लोगों को राज्य SDRF और पुलिस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। डायल 112 के माध्यम से नगर में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया है। नदी घाट के पास स्थित निचले इलाकों के परिवारों से तुरंत मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है। प्रभावित परिवारों के लिए स्थानीय कन्या स्कूल और बॉयज स्कूल में राहत शिविर बनाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के युवा बुंदेली गायक सुनील लोधी को 1,00,000 रुपए की सम्मान निधि, बेहतर इलाज, आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक सहयोग और औपचारिक संगीत शिक्षा में मदद देने की घोषणा की है। धार जिले के जनपद पंचायत मनावर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय युवा संगम एवं उद्यम संवाद में 50 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 17 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ। डिंडोरी में आपदा मित्र योजना अंतर्गत 7 दिवसीय प्रशिक्षण का कल शुभारंभ हो गया। झाबुआ के पेटलावर क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए कुल 12,50,00,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आगरमालवा जिला एवं जल एवं स्वच्छता मिशन में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने हर घर नल से जल समूह का जल प्रदाय योजना के कार्यों का प्लान तैयार कर 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर जिले के 4 मंदिरों में मंदिरों पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन आज किया जाएगा। शिवपुरी में सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण भजन संध्या होगी। इंदौर जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने इंदौर जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर सुने। नमस्कार।

मीडियम वेव भोपाल 5 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की है।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 19 सितंबर 1931 को गांधी जी की बच्चों से हुई चर्चा के अंश। ये चर्चा संडे ऑब्जर्वर में 20 सितंबर 1931 को प्रकाशित हुई। 19 सितंबर 1931 को तीसरे पहर किंग्सले सेटलमेंट के हॉल के बीचों बीच फर्श पर बैठे गांधी जी ने बो इलाके के बच्चों के एक दल से भेंट की, जिसमें कोई भी बच्चा 12 वर्ष से अधिक का नहीं था। आयोजन सर्वथा अंतरंग था। मिस लेस्टर के एक दो सहायकों, जिंदा दिल श्री और श्रीमती जॉर्ज लैंसबरी और भावनगर के शालीन दीवान सर प्रभाशंकर पट्टणी के सिवा वहां कोई भी बड़ी उम्र का आदमी मौजूद नहीं था। इस भेंट के तुरंत बाद गांधी जी ने स्वयं एक संवाददाता को उसके बारे में सभी बातें बताईं और कहा, भारत के मौसम, भारतीय बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों और इसी तरह की दूसरी बातों के बारे में जब प्रश्न किए जा रहे थे तो एक बच्चे ने मुझसे मेरी भाषा के विषय में पूछा। इससे मुझे वो मौका मिल गया जिससे कि मैं चाहता था और मैं उन्हें बहुत से शब्दों

समान उद्गम के बारे में बताने लगा। मैंने पेटर फादर और हिंदू पिता तथा मैटर मदर और हमारा अपना माता शब्द लिया। जब मैंने उनसे ये पूछा कि इससे क्या साबित होता है तो वो बोले, इससे ये साबित होता है कि हम सब एक ही नस्ल के हैं। इस पर मैंने कहा, तो हम सब एक ही परिवार के हैं और हमें परस्पर मित्र होना चाहिए। और उन्होंने मेरी ये बात मानी। मैंने फिर लड़कों से पूछा कि क्या उनमें से कोई हमले का जवाब हमले से देता है। 10-12 बहादुर लड़कों ने अपने हाथ उठा दिए। इससे मुझे अहिंसा के सिद्धांत पर उन्हें एक छोटा सा पाठ देने का मौका मिल गया। उसके बाद मैंने पूछा कि दरअसल उन्हें उसके बजाय क्या करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, मित्रता कर लेनी चाहिए। और मैंने कहा कि ये बात उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। लंदन के बच्चे मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि यहाँ और जिन घरों में मैं आज सुबह गया था, दोनों जगह उनसे मिलकर मुझे बड़ा आनंद मिला। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 19 सितंबर 1931 को गांधी जी की बच्चों से हुई चर्चा के अंश। ये चर्चा संडे ऑब्जर्वर में 20 सितंबर 1931 को प्रकाशित हुई। इस भेंट के फलस्वरूप कुछ बच्चों ने अपना ये संकल्प प्रकट किया कि उनका एक छोटा सा शिष्टमंडल भारतीय बच्चों के नाम मैत्री का एक संदेश लेकर गांधी जी के पास जाएगा। आइए अब गांधी चर्चा का समापन करते हैं बापू के इस प्रिय भजन से।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी चर्चा, तुलिका शर्मा की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त स्मिता। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कृष्णा से। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत रचना इस्माइल दरबार की है। आवाज़ सुखविंदर और आयशा की। आइए सुनते हैं फिल्म कृष्णा का ये गीत।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर, एसपी शैलजा और आयशा की आवाज़ों में फिल्म किसना का गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है ओ माय गॉड। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। आवाज़ें हैं मिक्का सिंह और श्रेया घोषाल की।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097

0: डायल करें।
1: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं फिल्म संगीत का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अमर प्रेम से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत रचना आर डी बर्मन की है, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। आवाजें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली हो गई। आवाज़ लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लगान से। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत रचना एआर रहमान की है। आवाज़ें हैं आशा भोसले, उदित नारायण और वैशाली की। आइए सुनते हैं फिल्म लगान का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है, और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
1: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
4: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य

0: विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें

0: कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी

0: प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends two more aircraft with relief materials to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of 2020 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And now the news in detail. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
5: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
4: Our correspondent has filed this report.
6: ISRO said the 2,367 kg satellite was placed in its intended sub-geosynchronous transfer orbit about 18 minutes after liftoff. EOS-5 is a state-of-the-art Earth observation spacecraft and India's first imaging satellite to be placed in a geosynchronous orbit. It is designed to provide frequent, near real-time imagery of large areas, strengthening India's capability to monitor the Earth. The satellite's data will support applications in agriculture, natural resource monitoring, and disaster management. It can provide timely information during disasters and help authorities plan and respond to emergencies. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. The mission also demonstrates India's growing capability in indigenous launch vehicle technology. Allu Murli, Akashwani News.
4: Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of India's first ever imaging satellite from the geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. The Prime Minister said the growing partnership between ISRO and the Indian industry is adding new strength and scale to country's space program and expanding India's capabilities across the entire space ecosystem. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. Government has constituted a 31-member Joint Parliamentary Committee, JPC, on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the amendment bill. We have a report.
7: Prominent names from Lok Sabha and the committee include Bhartruhari Mehtab, Tejasvi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy are in the committee. Both houses of parliament on 12th August gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. With Aman Yadav, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
4: The Office of the Chief Electoral Officer of Delhi has informed that the electors who were unable to submit their filled-in enumeration forms within the specified time, that is from 30th of June to 17th August 2026, may file Form 6 along with the prescribed declaration form for inclusion during the claims and objections period, that is 31st of August to 30th September this year. The Commission said the electors may file Form 6 to include their names in the final electoral roll to be published on the 4th of November this year. The Supreme Court of India will host the BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. The forum will bring together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. The forum will provide a platform for dialogue among the participating judiciaries and for exchange of views on contemporary issues relating to justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development. Chief Justice of India Surya Kant will hold a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations on the opening day. He will meet judicial leaders from Russia, China, Egypt, Indonesia, the UAE, Belarus, Kazakhstan, South Africa, Iran, and Uzbekistan. The bilateral meetings will provide an opportunity for direct interaction and exchange of views on matters of mutual judicial interest and will further strengthen engagement among the participating judiciaries. This is Akashwani giving you the news.
8: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
4: Welcome back to Morning News on Akashwani. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, is being celebrated across the country today. Devotees throng the temples to offer prayers to Lord Krishna.

0: our correspondent reports that Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh is fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna.
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. द स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा एंड वृंदावन स्टीप्ड इन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा आर रिवर्बरेटिंग विद द चैंटिंग्स ऑफ जय श्री कृष्णा. टुडे इज लॉर्ड कृष्णास बर्थडे एंड प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड सेलिब्रेशन आर अंडर वे थ्रू आउट द सिटी. लॉर्ड कृष्णास बर्थ एनिवर्सरी इज बींग सेलिब्रेटेड विद ग्रेट डिवोशन एंड एंथुजियाज्म थ्रू आउट ब्रिज मंडल एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑल्सो. बट द ग्रैंड सेलिब्रेशन इज इन मथुरा वृंदावन वेयर ऑल टेम्पल्स आर डेक्ड अप फॉर मिडनाइट celebration. Flower petals and colorful lights are decorated everywhere. On this occasion, millions of devotees are already doing darshans of Lord Krishna. In view of the huge crowd of devotees coming from India and abroad, extensive security arrangements have been made in the entire Mathura city and police are also gearing themselves for traffic management. For the first time in Mathura, on Janmashtami today, 500 drones will bring Lord Krishna's birth and his various pastimes to life in the sky. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: The auspicious festival of Janmashtami is being celebrated across Gujarat with immense grandeur and deep devotion. Grand celebrations and special religious rituals are underway at the major Krishna shrines, including the world-famous Dwarikadhish, Dakor

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू के गाए कुछ गीत। इसी क्रम में सुनते हैं एक और गीत इन्हीं की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कुमार सानू के गाए कुछ गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में। इस गीत के साथ ही सुगम संगीत यही संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वीवर ने कल नई दिल्ली में बातचीत में अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के विश्वविद्यालयों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को भारत में अपने परिसर खोलने के लिए भी आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सीहोर में एक निजी कंपनी की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट शुरू करेंगे। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह देश की एक ही स्थान पर स्थित सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में कहा कि सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ग्रेडेड पॉइंट सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है। इस पहल के तहत बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला को फूल बंगले की तर्ज पर भव्य रूप से सजाया गया है। प्रदेश के 29 ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर श्री कृष्ण पर्व के आयोजन रखे गए हैं। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि छतरपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि ग्वालियर की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और नई ऊर्जा से भरे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के गुड मॉर्निंग ग्वालियर की चर्चाएं। सबसे पहले बात करते हैं आज के उस विशेष पर्व की, जिसका नाम लेते ही मन में बांसुरी की मधुर धुन, मोर पंख और माखन की मटकी और नटखट मुस्कान उभर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। और आप सभी श्रोता जनों को हमारे तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, ये आस्था, प्रेम, आनंद और जीवन को सही दिशा में जीने का संदेश देने वाला पर्व भी है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा की कारागार में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और श्रोताओं, उस समय मथुरा पर कंस का शासन था और उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे कठिन समय में श्री कृष्ण जी का जन्म आशा और धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में देखा गया है। इसलिए जन्माष्टमी की रात जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, भजन गूंजते हैं और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो उसके पीछे केवल उत्सव नहीं, एक संदेश भी छिपा है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का जन्म अवश्य होता है। और श्री कृष्ण जी का जीवन हमें केवल धार्मिक कथाएं ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कई दिशा भी देती है और बहुत सारी सीख भी देती है। बाल कृष्ण की शरारतें हमें जीवन में खुश रहना और दूसरों के साथ आनंद बांटना सिखाती है। और वहीं सुदामा के साथ उनकी मित्रता हमें बताती है कि सच्चे रिश्तों में धन और दौलत नहीं देखी जाती, बल्कि अपनापन बेहद महत्वपूर्ण होता है।

कीर्तन होते हैं। वहीं महाराष्ट्र और कुछ अन्य क्षेत्रों में दही हांडी उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र होता है, और दही हांडी भी हमें एक सुंदर संदेश देती है। बताइए क्या, ज़रा सोचिए, दही हांडी हमें क्या संदेश दे सकती है? हमें ये संदेश मिलता है कि एक टीम वर्क कितनी सुंदरता से पेश की जाती है उस दही हांडी के कार्यक्रम में। तो हमें ये टीम वर्क, एकता और सहयोग, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये विशेष तौर पर इस कार्यक्रम से हम सीखते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति अकेले मटकी तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सभी एक दूसरे को सहारा बनते हुए और ऊंचाई भी मतलब छोटी ना लगे, इसके लिए वो कितनी मशक्क़त से एक दूसरे को टाइटली पकड़ते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो श्रोताओं, इस जन्माष्टमी में हम केवल उत्सव ना मनाएं, बल्कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें, है ना? और अपने कर्म को ईमानदारी से करना, मुश्किल समय में धैर्य रखना, रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखना, ये सबसे बड़ी सीख इस प्यारे से उत्सव से मिलती है। इस जो महोत्सव जो हम मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसमें हम कितनी सारी बातें यहाँ ध्यान देने वाली हैं, उत्सव के साथ में हमारे जीवन में कितनी खुशियाँ ला देंगी अगर हम इन बातों पर ध्यान दें। और इन्हीं सुंदर विचारों के साथ एक बार फिर गुड मॉर्निंग ग्वालियर की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, शांति, प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएँ।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी ग्वालियर आपकी सेवा में है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम में। और अभी हम बात कर रहे थे त्योहारों की, खुशियों की और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। लेकिन श्रोताओं, खुश रहने के लिए एक चीज़ और भी बेहद ज़रूरी है, वो है, बताइए। आप सभी बड़े समझदार हैं और आप लोगों ने समझ भी लिया कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वस्थ रहने की। और स्वस्थ रहना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो काम में मन लगता है, पढ़ाई में ध्यान लगता है और परिवार के साथ अच्छा समय बीतता है। और जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी लगने लगती हैं। अगर हम स्वस्थ ना हो और हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना हो तो स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता और त्योहारों की खुशियाँ भी अधूरी सी लगती हैं। इसलिए आज हमारी चर्चा का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की, जो हर वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। और एक पूरा सप्ताह इस पोषण के नाम ही क्यों, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ जीवन जो है वो पोषण आहार से बड़ा इसका नाता है, बड़ा जुड़ाव है। क्योंकि जितना हम स्वस्थ रहने की बात करें तो इसकी शुरुआत हम

अपने घर से ही कर सकते हैं और इसकी शुरुआत हम अपने खाने की, अपने भोजन की थाली से कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को संतुलित आहार देना, संतुलित आहार, उचित पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना। वो सारी ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए जो हमारे आहार में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करें अपने भोजन के थाली की, तो सुबह का नाश्ता आपको प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। दोपहर का भोजन या रात का खाना, क्या सोचिए आप सभी की ये थाली में केवल स्वाद ही हम परोस रहे हैं या पर्याप्त पोषण भी है? हमारे शरीर को अलग अलग पोषण जो तत्व हैं वो आवश्यक मात्रा में मिल रहे हैं या नहीं, ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ध्यान देते हैं कि हमारे स्वाद जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन पोषक तत्व की कमी ना हो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर और पर्याप्त पानी, इन सभी का अपना महत्व है। प्रोटीन शरीर के विकास और ऊतकों की मात्रा बहुत बढ़ाने में मदद करता है, जो हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। फल और सब्जियां जो और अनेक विटामिन्स और खनिज फाइबर चीज़ों को प्रदान करती है। अनाज हमें ऊर्जावान बनाए रखता है और पर्याप्त पानी शरीर में सामान्य कामकाज के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगी और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वस्थ भोजन को अगर हम समझें तो ये केवल एक पेट भरने का नहीं बल्कि शरीर की ज़रूरत के अनुसार सही और संतुलित भोजन लेना होता है। अगर आपको स्वादिष्ट समोसा या एक पौष्टिक फल में से किसी एक चीज़ को चुनने की बात अगर कही जाए तो हम हमेशा ध्यान देंगे कि कुछ स्वाद वाली चीज़, यानी समोसे पर ही ध्यान जाएगा। और समोसा तो दोस्तों हमारा भी बड़ा प्रिय है, लेकिन हम रोज़ की थाली में तुलना अगर करें तो हमें अत्यधिक चीज़ें हमारे आहार को देखते हुए, संतुलित आहार को प्रभावित जो ना करें, इस तरह के हमें भोजन को लेना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि पौष्टिक भोजन का मतलब महंगे खाद्य पदार्थ है, पर ऐसा नहीं है। हमारे आसपास हमारे जो वैकल्पिक चीज़ है वो बिल्कुल हमारे घर पे ही उपलब्ध होते हैं। जैसे आपके दाल प्रोटीन वाली चीज़ है तो वो आपकी थाली में होना बहुत ज़रूरी है, और चना, राजमा, मूंगफली, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, अनाज और मोटे अनाज, मिलेट्स, ये भी आज कल बड़ा फेमस है और बड़ा फ़ायदेमंद भी है। तो दोस्तों, पोषण का जो महत्व है केवल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों और युवाओं और महिलाओं, पुरुष, बुज़ुर्गों, ये सभी लोगों में ये आहार अपनी सही मात्रा में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और हर उम्र में संतुलित पोषण बहुत ही ज़रूरी है। एक छोटी सी आदत, एक बड़ा बदलाव। आज से अपनी थाली को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या उसमें पर्याप्त सब्जियां हैं, क्या पर्याप्त फल भोजन में है, और पर्याप्त पानी, नियमित नाश्ते का समय, ये सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप स्वस्थ होते हैं और आपसे ही हमारा कार्यक्रम सफल होता है। तो आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और आपके परिवार के लिए भी और इस समाज के लिए भी। तो इन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर ध्यान दें। स्वस्थ जीवन केवल अच्छी चीज़ खाने से नहीं बनता, बल्कि पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधियों से और स्वच्छता और अपनी अच्छी जीवन शैली से भी बनता है। तो ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और फिलहाल कार्यक्रम में इस गीत को हम सुनते हैं।

दोस्तों, गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस ख़ास तारीख पर हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने ज्ञान, तर्क और विचारों के माध्यम से भारत की आवाज़ को दुनिया के एक बड़े मंच तक पहुंचाया। और हम बात कर रहे हैं आज 4 सितंबर को इस महान राष्ट्रवादी नेता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी की जयंती मनाते हुए आज का ये दिन याद कर रहे हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। और दादा भाई नौरोजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था भारत की आर्थिक स्थिति का जो गहराई है।

इसे अध्ययन करना और बताना कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण भारत की संपदा किस प्रकार जा रही थी। इसी विचार को उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकास के सिद्धांत के रूप में भी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने केवल भारत में रहकर आवाज़ नहीं उठाई बल्कि ब्रिटेन की संसद तक पहुंचकर भारत के हितों की बात रखी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीयों में से एक और पहले भारतीय सांसद भी बने। उस दौर में जब भारत गुलामी की बेड़ियों में था, एक भारतीय का ब्रिटिश संसद तक पहुंचना और वहां भारत की समस्याओं को मजबूती से रखना बड़ी उपलब्धि रही होगी। दादा भाई नारोजी का जीवन हमें ये सिखाता है दोस्तों कि देश सेवा केवल संघर्ष के मैदान में उतरकर ही नहीं होती। ज्ञान भी एक शक्ति है, तर्क भी एक हथियार है और सच्चाई को सही मंच तक पहुंचाना भी राष्ट्र सेवा है। आज उनकी जयंती पर हमें बहुत गर्व हो रहा है और उन्हें सादर नमन करते हैं। हम उनके विचारों को याद करते हुए यही संकल्प लें कि हम अपने देश के इतिहास को जानेंगे, अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को समझेंगे और देश के विकास में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। दादा भाई नारोजी को सत सत नमन। देश के लिए कुछ करने की शुरुआत इस बात को समझने से होती है दोस्तों कि देश की आवश्यकता किस चीज़ की है ना। तो इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं आज के ही दिन में जन्मे एक और महान व्यक्ति की। आज हमारी चर्चा हम ऐसे दुनिया में लेकर जा रही है जहाँ कभी इंसान ने न केवल कल्पना की थी बल्कि इस बात की हम गुंजाइश भी, मतलब हमें इतनी पता नहीं थी कि हम इतने आगे बढ़ जाएंगे। क्या मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है, क्या वो भी हमारी तरह समझ सकती है और समस्याओं का समाधान खोज सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने हमारी दुनिया को बिल्कुल बदल के ही रख दिया और आज हमारे मोबाइल से लेकर अस्पताल, शिक्षा, विज्ञान और उद्योग तक हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को वैज्ञानिक दुनिया के सामने रखने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक कौन थे? तो चलिए आज बात करते हैं जॉन मैकार्थी की। 4 सितंबर 1927 यानी आज के ही दिन 4 सितंबर 1927 को अमेरिका के बोस्टन में जन्मे जॉन मैकार्थी कंप्यूटर विज्ञान के उन महान वैज्ञानिकों में से शामिल थे जिन्होंने मशीनों की बुद्धिमत्ता पर गंभीर वैज्ञानिक सोच को एक नई दिशा दी। साल 1955 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया और अगले वर्ष यानी 1956 में AI को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नए रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। श्रोताओं, इस समय जब हम बात करें कंप्यूटर की तो आज की तरह हमारी जेब में नहीं बल्कि बड़े बड़े कमरों में हुआ करते थे कंप्यूटर्स और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी बड़े और काफ़ी गर्म होते थे। तो ये कल्पना करना कि मशीन किसी दिन इंसान की तरह समस्याओं को समझने लगेगी और हमारी निजी समस्याओं का हल भी बताने लगेगी, ये बड़ा ही मुश्किल था। तो जॉन मैकार्थी जो थे वो एक ऐसी सोच को हमारे सामने लेकर आए AI यानी इंटेलिजेंस मशीन और कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में इन्होंने ये काम किया और आज जिसे हम AI जैसा जो हमारे लिए बहुत ही हाथों में हम मोबाइल को लेकर चलते हैं और AI के माध्यम से हम अपनी बहुत सारे दैनिक कार्यक्रम में जो कोई भी समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना हो, कुछ सर्च करना हो या कुछ भी इंस्टेंट हमें कुछ प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो ये AI बड़ी हेल्पफुल हो

तो आज जितनी ये आसान तरीके से हमें ये मिल रही है उसे बनाने के लिए हमारे बीच ये जो वैज्ञानिक है ये बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जॉन मैकार्थी जिनका आज जन्मदिन है, तो ये भी एक इनकी बड़ी उपलब्धि रही हमारे जीवन में। इनके योगदान से बहुत कुछ सरल हो चुका है, तो इनके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और दोस्तों, भविष्य अचानक नहीं बनता, भविष्य की शुरुआत किसी न किसी नई सोच से तो होती ही है। और ऐसे ही जिज्ञासु मन बने रहें और ऐसे ही नए विचार और नई उपलब्धियाँ हमारे बीच पहुँचती रहे, और ऐसे महान वैज्ञानिकों को हम शुभकामनाएं देते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो इतनी सरलता से कर रहे हैं वो इनके योगदान से कर रहे हैं। तो ये आज की जो थी, या दिन की जो तारीख की जो थी जानकारी, वो हमने आपको दी। फिलहाल समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आपसे और बात करें, तो अनुमति दीजिए अपनी दोस्त स्मिता को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भरत नायक का सितार वादन। राग है मियाँ की तोड़ी और आपके साथ तबला पर संगत कर रहे हैं विकास विपट। आइए सुनते हैं भरत नायक का ये सितार वादन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया भरत नायक का सितार वादन, राग था मियाँ की तोड़ी। आपके साथ तबला पर संगत कर रहे थे विकास विपट। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख है राकेश चतुर्वेदी का, वाचन स्वर है रत्नेश सोनी के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर रत्नेश सोनी। कटनी जिले में भी पिछले एक सप्ताह से झमाझम बारिश हो रही है। मानसून के शुरुआती दौर में कम बारिश होने से जहां जिले के लोग चिंतित थे, अब इस बारिश से लोगों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है। जिले में 1 जून से 3 सितंबर तक कुल 745 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान जिले में 939 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। अभी भी जिले में पिछले साल की तुलना में 20% कम बारिश हुई है। जिले के 99 लघु और 1 मध्यम जलाशय में पानी लगभग भर गया है। कटनी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर झिंझरी स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जिले में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कटनी जिले में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में वन विभाग एवं स्व सहायता समूह के द्वारा जिले भर में वृद्ध वृक्षारोपण किया जा रहा है। वन मंडल अधिकारी गर्वित गंगवार ने बताया कि जिले के 6 वन रेंजों में 47 स्थान पर वृद्ध वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। जिले में इस वर्ष 15 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 11 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे और लगभग 4 लाख पौधे पुराने वृक्षारोपण स्थल पर लगाए जाएंगे। कटनी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक लोक कल्याण मेला आयोजित किया जा रहा है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष मेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन संचालित किया गया। इस दौरान 118 कुल वारंटियों की गिरफ्तारी भी की गई। अवैध शराब के परिवहन, विक्रय एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए 16 प्रकरण आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए तथा संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। कटनी में रक्षाबंधन पर्व पिछले दिनों संपन्न हुआ। बारडोली उत्सव समिति द्वारा गाटर घाट में 2 दिवसीय कजलिया मेले का आयोजन हुआ। कटनी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा कनेक्ट संवाद के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, युवा एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के तहत नगर पालिक निगम कटनी द्वारा स्वच्छता के प्रति नागरिकों एवं सफाई मित्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। महिला समूहों के साथ जनसंवाद एवं बैठक आयोजित की गई। सफाई मित्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सुरक्षित एवं बेहतर स्वच्छता कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया। कटनी में आपदा मित्र योजना के अंतर्गत 150 स्वयंसेवियों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, आकाशीय बिजली, चक्रवात, बादल फटना एवं सूखा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कटनी में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 बीबीजी रामजी के अंतर्गत जिला स्तरीय पंच सम्मेलन संपन्न हुआ। विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि ग्राम का विकास प्लान तैयार करते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों और वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता से कराया जाए। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विकसित भारत जी रामजी योजना के कानून, नियमों और प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कटनी जिले के सभी 1713 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की वृहद कार्य योजना कटनी महिला बाल विकास विभाग ने तैयार की है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए प्ले स्कूल की तरह पजल गेम, खिलौने, कठपुतली और स्मार्ट गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। समग्र ई केवाईसी अभियान में कटनी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

10:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है आपकी अपनी पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला पहला गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह ने और संगीत रचना ओपी नैयर की है। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और इस गीत को सुनना चाहते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमराना नास, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म मेरे सनम से।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से। इस गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है OP नैयर ने। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर से सुरिंदर संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा संधू और मैक्स। यही गीत सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्स हरिद्वार उत्तराखंड से, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रामचंद्र वर्मा, रमेश वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। आप सभी हमें लिखते हैं ये मैसेज जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से और खंडवा से। तो आइए आपकी पसंद का सुनते हैं ये गीत फिल्म कश्मीर की कली से।

0: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं अपनी पसंद की फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब
2: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म CID से। जानिसार अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने। आवाज़ें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गुंज डुंडवारा से शमशूल कमर राही, शाहीन फ़तिमा, अदनान खान, फैज़ान खान और अनु खान। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा परिधि, मायरा और समस्त सुरोशे परिवार। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और राबिन राणा। जगदीश सिंह मठाड़ू, विरपाल कौर मठाड़ू, मोगा पंजाब से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जागुताई राजे जाधव देशमुख,

कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वदा हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख, मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में, फिल्म CID से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आरजू से। हज़रत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान और पांडरकर वाड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री और

समस्त बुरांडे परिवार। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और समस्त परिवार। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म आरजू से।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म काला पानी से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, और इस गीत को सुनना चाहते हैं मुकाम पोस्ट काले गांव जाफराबाद मराठावाड़ा से श्री सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, जगुताई राजे, संचित देशमुख। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन। सरथना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, और यही गीत सुनना चाहते हैं। मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल, शोभा फुंदीबाई बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर यह गीत काला पानी से आपके लिए।

0: हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सर।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म छाया से। राजेंद्र किशन के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की। इस गीत को सुनना चाहते हैं बीड़ शहर से प्रकाश, पराग, प्रदीप, केशव, रामनिवास अग्रवाल, मालवा रेडियो श्रोता संघ, प्रमीलागंज, आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, लच्छनपुरा से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, टिवानशी, एलानी, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह भूख और समस्त खेड़ा परिवार, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदर सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी और कृति वर्मा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा कासिम, नदीम और जुनैद अब्बासी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म छाया से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म किस्मत से। SH बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है OP नैयर ने। आवाज़ है महेंद्र कपूर की। आइए सुनते हैं इस गीत को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम। ग्राम संदलपुर आंतरी से फरमाइश करते हैं कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशी मिश्रा। किशनगांव गंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, मेघा राशि, माधुरी किरण और अनुराग मोहन। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू। मलकापुरा महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुहेरकर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नरवरकर, निर्मला और विशाल। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म किस्मत से।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपनी ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुनते हैं इस कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म बेमिसाल से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की। और इस गीत को सुनने की चाह रखते हैं सहावर रोड गुंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शामसुल कमर राही, मोहम्मद उस ये लिखते हैं हमें पत्र मुक्काम पोस्ट फुलचिंचोली पंडरपुर से, जाकिर सुमैया सुबान, सलमा मुमताज दिलशाद नासिर और इनके चाचा और चाची, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इचलक करंजी से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, ये हमें लिखते हैं मैसेज महाराष्ट्र से, राहुल बंसोड़, सम्यक बंसोड़, शरण बंसोड़, मीरा बंसोड़, लुबिनी नगर अकोला से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बेमिसाल से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म बालिका वधू से। आवाज़ है अमित कुमार की और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म बालिका वधू से।

0: इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में अगला कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक पोस्ट में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति एवं दर्शन में जीवंतता आती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव परशुराम श्री कृष्ण लोक का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर 55 जिलों के 111 स्थानों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज सीहोर में बढ़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पार ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कंपनी के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आयोजन की शुरुआत होगी। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चित्रकूट, मंडला, छतरपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आज नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि छतरपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: कर्णप्रयागी लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन। संगीतकार हैं तबला पर उस्ताद मोहम्मद नईम, वायलिन पर मनोज कुमार बमरेले, गिटार पर मोहम्मद अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: ये आकाशवाणी है। आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग में आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले।
1: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का जन्म मध्य प्रदेश के देवास में एक संगीत परिवार में हुआ। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु से अपने पिता और गुरु उस्ताद दद्दू खां साहब से गजल गायन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगरा और पटियाला घरानों के महान उस्ताद हाजी अमीर मोहम्मद खां साहब से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे देश के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गजल गायन और तबला वादन दोनों विधाओं में टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को बचपन से ही गजल गायन के प्रति गहरा लगाव रहा है। उनके द्वारा रचित गजलें शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत समारोहों में गजल गायन प्रस्तुत किया है। इनमें देहरादून का विरासत समारोह, हैदराबाद का आलाप गजल समारोह और बज़्मे गजल तथा भोपाल के भारत भवन में संतवाणी समारोह प्रमुख हैं। उनके अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जश्न उर्दू, भोपाल का बेगम ऑफ परी बाजार, जयपुर का सिंजारा समारोह, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और लखनऊ महोत्सव शामिल हैं। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को मध्य प्रदेश कला गौरव पुरस्कार, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान और प्राइड ऑफ भोपाल सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वर्ष 2023 में आकाशवाणी भोपाल में स्टाफ आर्टिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2023 में ही उन्होंने एक साथ 1500 विद्यार्थियों द्वारा तबला वादन करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
2: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वॉज बॉर्न इन देवास मध्य प्रदेश into a family of musicians. At the tender age of 5, he began his initial training in ghazal singing under the guidance of his father and guru, Ustad Daddu Khan Sahib. He subsequently received training in classical vocal music from the great maestro, Ustad Haji Amir Muhammad Khan Sahib of the Agra and Patiala Gharanas. He is the only artist in the country to have been awarded the top grade by the Directorate General, All India Radio, New Delhi, in both ghazal singing and tabla playing. Ustad Salim Allawale has had a deep passion for ghazal singing since childhood. The ghazals composed by him are based on classical ragas. He has performed ghazals at several prestigious national music festivals across the country. These include the Virasat Festival in Dehradun, the Alap Ghazal Festival and Bazme Ghazal in Hyderabad, and Santwani Festival at Bharat Bhavan, Bhopal. His other prominent performances include Jashn-e-Urdu, organized by the Madhya Pradesh Urdu Academy, Begum of Pari Bazaar in Bhopal, Sinjara Festival in Jaipur, the All India Radio Sangeet Sammelan in Nazibabad, Uttar Pradesh, and the Lucknow Mahotsav. Ustad Salim Allawale has been honored with several prestigious awards, including the Madhya Pradesh Kala Gaurav Award, Abhinav Kala Samman, Sangeet Shiromani Samman, Tal Mani Samman, Chakradhar Samman, and Pride of Bhopal. He retired from the post of staff artist at Akashwani Bhopal in 2023.

0: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की आवाज में अब पेश है राजेश रेड्डी की लिखी ये गजल, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू।
1: नाउ प्रेजेंटिंग अ गजल रिटन बाय राजेश रेड्डी, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू।

0: आज के इस गजल गायन की अंतिम प्रस्तुति में डॉक्टर बशीर बद्री की रचना परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।
1: एंड नाउ फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज गजल रिसाइटल वी ब्रिंग यू अ गजल रिटन बाय बशीर बद्र। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।

0: अभी आपने उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की गजल प्रस्तुति सुनी। संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर उस्ताद मोहम्मद नईम, वायलिन पर मनोज कुमार बमरेले, गिटार पर मोहम्मद अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: यू हैव जस्ट लिसन्ड टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले। ही वाज अकंपनीड बाय ऑन तबला उस्ताद मोहम्मद नईम, ऑन वायलिन मनोज कुमार बमरेले, ऑन गिटार मोहम्मद अरशद, ऑन सिंथेसाइजर शाहिद मासूम।
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भोपाल में की गई और इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। इसी के साथ आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग का समापन होता है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी भोपाल एंड ब्रॉडकास्ट बाय आकाशवाणी दिल्ली। With this, we conclude the first part of today's national program of regional folk and light music.
2: लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थान के मांड गायक और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत। गोपाल सिंह खींची ने गायन की शिक्षा मांड गायक चिरंजी लाल तंवर, शमसुद्दीन और बनारसी बाबू से प्राप्त की हैं। आपने कई विदेशी मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आप गायन के अलावा तबला और नगाड़ा वादन की भी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आपने कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं। आइए अब सुनते हैं उन्हीं के गाए लोकगीत।

0: लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के मांड गायक गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत। ये प्रस्तुति आकाशवाणी जयपुर की थी।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज 55 जिलों के 111 स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस पावन अवसर पर परशुराम श्री कृष्ण लोक का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की बधाई दी है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि समाज सेवा, समरसता और सांस्कृतिक चेतना को जगाने में संगठन की भूमिका सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज सीहोर में बढ़ियाखड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पावर ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कंपनी के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट भी होगा। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत दूरस्थ जिलों का भ्रमण कर शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश द्वारा विकसित सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिस एवं अन्य राज्यों में लागू किए जाने वाले हस्तक्षेप के रूप में मान्यता मिली है। प्रदेश में पहली बार भोपाल देवास मार्ग के फंदा टोल प्लाजा पर बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम का परीक्षण शुरू किया है। इस व्यवस्था में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। नगर निगम भोपाल द्वारा साकेत नगर एम्स अस्पताल और भानपुर क्षेत्र से अतिक्रमणों को हटाकर कुल 15 ट्रक विभिन्न प्रकार का सामान जब्त किया है। और पंजाब के लुधियाना में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप श्रोताओं की पहली फरमाइश हमने ली है फिल्म सिलसिला से। स्वर है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है शिवहरी का।

सिलसिला फिल्म के इस खूबसूरत गीत को पसंद करने वाले श्रोता थे छत्तीसगढ़ के ततरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानीपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। अगले श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद।

अभी हमने गीत सुनवाया निकाह फिल्म का अपने उन श्रोताओं को जिन्होंने लिखा था कि हमें कोई भी गीत सुना दीजिए। उनके नाम हैं इस तरह से, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत को पसंद किया था गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखबिंदु संधू, महावीर संधु, गुरचरण, गिरिवर, रमेश और इनका पूरा परिवार, आप सभी ने पसंद किया था कार्यक्रम में ये गीत। अब हमने कार्यक्रम में अगला गीत लिया है फिल्म लावारिश से। कार्यक्रम में हमने अगला गीत लिया है फिल्म प्रेम पर्वत से, सुमधुर आवाज़ लता मंगेशकर की। गीत लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत है जयदेव का। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक ने। इसी गीत को पसंद किया है जिला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहद से आप सभी ने, मुशर्रफ खां तड़बी, जरीना तड़बी, मुबारक तड़बी, परवेज तड़बी, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़बी, रीना मुशर्रफ, रोजुबाई तड़बी, सनी बाबू, परू तड़बी और इनके पूरे परिवार ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर हम सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म है लावारिश। स्वर हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के। गीत है अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनना चाहे मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गभाण, श्रीमती सरिता गभाण, प्रिंस इकांस, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, आकार हाइट्स बहादुरपुरा, नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गभाण ने। इसी गीत को सुनना चाहे जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा बहादुरपुर जिला मंदसौर से तूफान डांगी, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने। इसी गीत की फरमाइश की है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीतारानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया और बेबी आरजू जाजूरिया ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सरिता को, नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। अंतराल का समय समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 17वां भाग।

मेहनती और ईमानदार रतन की आत्महत्या के बाद उसकी पत्नी जमुनिया को नवजात शिशु के साथ करण घर से निकाल देता है और एक रहमदिल इंसान छुल्लन बाबा इन दोनों को प्रश्रय देते हैं। जमुनिया के मन में पढ़ने लिखने की प्रबल इच्छा को देखकर झुलन बाबा उसे गांव के एक गुरुजी के पास ले जाते हैं, जिनसे शिक्षा लेकर जमुनिया शीघ्र ही पढ़ने लिखने और सोचने विचारने योग्य हो जाती है। तभी गांव की सीट महिला सीट हो जाती है, जिसके लिए दीवान, जो कि सदैव सरपंच रहता आया है, अपनी

0: पत्नी को खड़ा करता है और गांव के लोग जमुनिया के व्यवहार से प्रभावित होकर जमुनिया को खड़ा करते हैं। इसी बीच गांव की लड़की मेघा और उसके दोस्त शिल्पी और जयंत भी गांव आते हैं और वे भी जमुनिया से जुड़ जाते हैं। अंततः जीत जमुनिया की होती है। इस बीच जयंत जमुनिया को चाहने लगता है और अपने प्रेम का बहुत संभल कर इजहार करता है। अब आगे
1: आप लोग शर्मिंदा ना करें, आप लोगों के कारण ही तो ये दिन देखने को मिला है। चलिए आप सबका आज की पंचायत में स्वागत है। बाबा
2: बोलो बिटिया,
1: आप इनको जानते हैं? ये कौन है?
2: अरे हाँ बिटिया, जानता हूँ, खूब जानता हूँ। ये दीवान का हिसाब किताब रखते हैं।
1: अच्छा,
2: कहाँ कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी इनको रहती है। अरे भाई, ये दीवान के खास कारिंदा हैं।
3: लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं?
4: माफ करना जयंत बाबू, आप तो खुद बाहर के हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए बैठे हैं?
3: आप भी माफ कीजिएगा, मैं जमुनिया जी के साथ आया हूँ और ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछ सकते। और अगर आप भी दीवान जी के साथ आए होते तो मैं भी आपसे नहीं पूछता या आपके बारे में नहीं पूछता।
1: जयंत बाबू ने बात तो पक्की की है भैया, आप दीवान जी को बुला कर लाओ तो ही हिसाब का लेन देन होगा। आज अगर टाइम ना हो तो फिर दीवान जी से पूछ लो कि वो कब हिसाब देना चाहते हैं, हम उसी दिन आ जाएंगे। पर हिसाब किताब तो उन्हीं को देना होगा।
5: बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
4: पहुंचा देते हैं दीवान जी के पास खबर। फायरे, का खबर लाया?
6: मालिक
4: मालिक मालिक का कर रहा है, बोल ना।
6: अरे वो जमुनिया बड़ी घाघ है दीवान जी।
4: अच्छा,
6: कुछ चलने ही नहीं देती।
7: हाँ दीवान जी,
6: उसने कहा है कि जब तक आप नहीं आएंगे चार्ज का लेन देन नहीं होगा।
4: अच्छा, अरे उस ससुरी को चार्ज तो हम अच्छे से दे देते, पर का करें, और अभी समय हमारे खिलाफ चल रहा है।
7: तो है,
4: और हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, इसलिए हमें लग रहा है कि मजबूरी में हमें ही जाना होगा।
6: हाँ मालिक, हाँ मालिक।
4: देखा नहीं जिस तेवर के साथ वो कल गोलू और अपनी उ देवरानी को लेकर गई और 25,000 के कागज फड़वाए, वो दीवान की जिंदगी में भूलने की चीज नहीं है रे। चलो चलत है। पर सुनो।
6: जी जी मालिक।
4: जो तुमने हिसाब किताब तो ठीक से लिख लिया है ना? हाँ का, और ये रजिस्टर, ये कार्ड सब ठीक ठाक तो कर लिए ना?
6: माफ करना दीवान जी,
4: हाँ
6: इसमें कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। और अगर इसे गौर से ऑडिट करवाया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे।
4: बहुत सही बच्चू, हमारी मुश्किल के जमाने आ गए और ये सरकार भी सारी मुसीबतें हमारे लिए ही खड़ी करती है। अरे असली राज तो अब इन्हीं लोगों का है, बस एक शिकायत कहीं भी कर दो, इनको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा और ये हमारी छाती पर सवार हो जाएंगे तो भी कोई नहीं सुनेगा। का बखत आ गया है। चलो अब मुंह का देख रहे, चलो चल के चार्ज देकर ही आते हैं। चलो
6: ठीक है मालिक, चल चलिए मालिक।
1: न, नमस्कार दीवान जी।
4: अरे नमस्कार नमस्कार जमुनिया जी। अरे भाई क्षमा कीजिएगा भाई, आने में थोड़ा विलंब हो गया। अरे भाई लोगों आप सबको नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार भाई जी, हमारे मुरली बाबू हैं।
6: राम राम।
4: हमारे गांव में सरकार का दिया बहुत कुछ है। हाँ, और वो सबका हिसाब यही देखते हैं भाई, इसलिए हमने पहले इनको भेजा था आपके पास। खैर एक काम करते हैं जमुनिया जी,
1: जी
4: जो कुछ भी हमारे पास है वो हम आपको अभी दे देते हैं, उसकी रसीद दे दीजिए।
1: बिल्कुल।
4: बाकी जो नहीं है उसके लिए बीडीओ साहब से पूछकर आपको बता देंगे।
1: बात लिखा पड़ी की है दीवान जी, है ना? जो भी आप देंगे हम कागज पर लिख लेंगे।
4: अच्छा।
1: उस पर हम दोनों दस्तखत करेंगे, और जो नहीं है उसका हिसाब आप बीडीओ साहब को देंगे। क्यों कैसे वो हम नहीं जानते।
4: अरे जमुनिया जी भाई, ये सरकार का दिया सारा सामान तो लगभग है। हाँ लेकिन कैश हमसे कुछ गलती से ज्यादा खर्च हो गया है। भाई तो कहा है उसमें नहीं, हम कुछ दिनों में जुटा कर आपको दे देंगे।
6: जी जी।
1: दीवान जी सामान की ना मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, लेकिन नगदी रकम है ना उसके मामले में मैं बिल्कुल साफ हूँ। मैं उतने पे ही हस्ताक्षर करूंगी जितना आप मुझे देंगे, और आपके भी हक में यही है कि उतने पर ही दस्तखत करें, जब इंतजाम हो जाए तो दोबारा देकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्यों है ना?
4: अच्छा अच्छा भाई ठीक है ठीक है भाई ठीक है। तो आप बता सकती हैं जमुनिया जी कि भाई हमें कितनी नगद राशि आपको देना है?
1: अरे मैं कैसे बता सकती हूँ।
4: हाँ
1: मैं पढ़ी लिखी तो हूँ पर मुझे इतना हिसाब किताब समझ में नहीं आता है ना, पर आप बता सकते हैं दीवान जी कितना पैसा इसमें कम है, क्यों?
4: तो जमुनिया जी हमें भी कौन ठीक से याद है, और भाई हिसाब किताब करने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ना।
6: हाँ समय तो लगेगा थोड़ा बहुत।
4: तो जमुनिया जी ऐसा करते हैं हम लोग एक हफ्ते बाद फिर यहीं मिल लेंगे। हाँ और तब बची हुई नकदी रकम का हिसाब आपको दे देंगे, ठीक है ना? अभी हम चलते हैं। जय राम जी की।
5: जय राम जी की।
4: चलो भाई चलो।
7: देखा मुरली,
4: ही ससुरी सत्ता एक दिन में आदमी को कितना होशियार बना देती है।
6: वो तो है मालिक।
4: अरे ये जमुनिया के मुंह में कल तक जबान नहीं थी।
6: हाँ।
4: आज वो दीवान से आंख में आंख डालकर बात कर रही थी।
6: हाँ मालिक।
4: अरे अब तुम्हारे लिए हमने एक हफ्ते का टाइम ले लिया है, जो भी काला पीला करना है कर डालो, और नकदी का हिसाब किताब अच्छे से मिला लो, समझ गए?
6: कोशिश करता हूँ, पर सच्ची तो यह है मालिक कि हमने खर्चा बहुत ज्यादा दिखाया है और कैश बहुत कम है, और जहाँ जहाँ खर्चा दिखाया है ना उसमें से ज्यादातर काम हुए ही नहीं है, और ये बात जमुनिया जरूर उठाएगी।
4: तब की तब देखेंगे, अभी तो हिसाब किताब मिलाओ जैसे तैसे और चारे दे दो ससुरी को। जाओ।
6: ठीक है मालिक। चलिए।
4: ये हवेली इतनी सोनी तो कभी रही नहीं। कहाँ गए सब लोग? अरे कहाँ सबके सब मर गए तुम लोग?
5: सभी यही है मालिक, सभी अपने काम में लगे हैं। हुकुम सरकार।
4: हुकुम सरकार हैं? सरकार के बच्चे? अरे हम पूछते हैं, तुम लोगों ने इलेक्शन में ऐसा क्या किया जो इतने बुरे तरीके से नाक कटवा दी हमारी?
5: मालिक
4: अरे आज ये दिन देखना पड़ रहा है तुम लोगों की वजह से। छोड़ेंगे नहीं ये जमुनिया और मेघा को, हम छोड़ेंगे नहीं।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: दोनों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। ओ, ओ। और वो गुरु बड़ा ज्ञान बांटता घूमता है। अरे इसका ज्ञान भी अच्छे से निकालना है।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: ये गुरु के चलते जमुनिया आज इस लायक हो गई कि हमसे चुनाव भी लड़ी
5: देखो तो।
4: और जीत भी गई। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह मत देख। सुन
5: मालिक,
4: ध्यान से सुन।
5: हाँ मालिक।
4: मुझे ये गांव में पहली आग देखनी है। आग। आग। हाँ, जिस भुग्गे का घर जलता हुआ देखना चाहता हूँ मैं। समझ गए तुम?
6: ठीक है मालिक।
4: भुग्गे का घर हवाले कर दो उसके घर को आग के।
6: चलो
4: जाओ, होशियारी से जाना।
3: तो आज का चार्ज लेने देने का काम तो हुआ नहीं। मेघा, जमुनिया, एक काम करते हैं, यही पास में एक छोटी सी झील है, सबके सब वहां चलते हैं और घूम कर आते हैं।
8: हाँ, चलो, चलो।
1: आप लोग जाओ, हमारे तो कल के खाने का इंतजाम भी नहीं है। घर में कुछ डलिया और पंखे बने हुए हैं, हाट भी है आज, मैं उन्हें वहां बेच आऊंगी, तब हमारी रात की रसोई पकेगी।
3: तो ठीक है, आप जाइए हाट, हम तीनों जाते हैं लेक पर। क्या ख्याल है मेघा?
8: अरे बिल्कुल नेक ख्याल है।
9: चलो चलो।
3: हाँ हाँ चलो।
9: मुझे तो लेक पर जाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है वहां। नहीं होगा तो कुछ मछलियां मार कर लाएंगे।
8: बहुत मजा आएगा।
9: और मेघा के घर में तो बन नहीं सकती।
8: नहीं बाबा, मेरे घर में नहीं।
9: तो ठीक है, जमुनिया को दे देंगे और उसका भी काम चल जाएगा। और हाँ, जो पंचायत घर में बैठे बैठे हमने जो काम की प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, उस पर भी विचार करते हैं। फैसले तो आखिर जमुनिया को ही लेना है ना।
3: हाँ, ये बात सही कही तुमने शिल्पी।
1: देखो भाई लोगों, सबसे पहले वो काम करें जिसमें पैसा ना लगे।
3: लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसा नहीं लगेगा?
1: स्कूल। गुरुजी दिन भर खाली रहते हैं और उनसे मैंने बात भी कर ली है, वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए तैयार है।
8: बहुत बढ़िया आइडिया है ये तो।
1: अपने गांव का 5 साल से छोटा कोई भी बच्चा काम पर नहीं जाएगा, उसे स्कूल जाना होगा।
10: हाँ, पर जमुनिया जी, तुम्हारी बात मानेगा कौन?
1: मनवाना आना चाहिए मेघा बहन। हर साल चुनाव से पहले लोग दारू पी पी कर घरों में लोटपोट रहते थे, चुनाव के लिए निकलते ही नहीं थे। इस बार 100 में से 80% लोगों ने चुनाव में वोट डाला है। हमने कोशिश की तभी तो 80% मतदान हुआ है।
8: क्यों हमारी कोशिश कामयाब रही?
2: चलो चलो चलो बिटिया, ये भी कोशिश करके देखते हैं।
1: हाँ बाबा।
2: कि कितने लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और जो नहीं भेजेंगे उन्हें भी बनाने की कोशिश की जाएगी।
8: हाँ बाबा।
1: और दूसरी बात, जिन लोगों को पट्टा मिल गया है,
2: हाँ,
1: पर किसी कारणवश उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद की जाए।
2: बिल्कुल।
1: उनका खेत तैयार किया जाए और उन्हें उसमें खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए।
8: बहुत बढ़िया।
1: इसमें भी कोई खास पैसा खर्च होने वाला नहीं है।
2: बहुत ही अच्छी बात।
3: हाँ, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है। चलो फिर इसी पर ध्यान देते हैं हम सब।
8: बिल्कुल
1: बिल्कुल।

0: अरे इधर कौन है, कौन है इधर?
1: अरे आग लग गई, अरे बचा ले, अरे बचा, आग लग गई ना।
2: कैसे होगा यार, कूदो करके कैसे घर चल रहा है? मेरे को तो ऐसे लगे यार जो सारी साजिश दीवान की है यार। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसा करो यार, कल सुबह चल के रिपोर्ट करो यार पुलिस में, थाने में रिपोर्ट करो चल के।
3: मेरे ख्याल से पहले हमें भुग्गा की मदद करनी चाहिए। सब लोग थोड़ा थोड़ा घास फूस देकर भुग्गा की झोपड़ी बनवाएं, उसका घर सही करें, उसके खाने व रहने की व्यवस्था करें। कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं है
4: भैया। भैया कपड़े तो हम दे देंगे। और जब पक्का के घर को रख दो, दो चार दिन
3: रिपोर्ट तो कल भी हो सकती है। आप सब जानते हैं कि ये आग क्यों लगाई गई और किसने लगाई है।
1: और हम तो कह रहे,
3: मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये हमारे गांव के विकास के सपने को भटकाने का षड्यंत्र है।
5: ये बात है।
3: जो भी है वो नहीं चाहता कि हम सब एकदम से आगे बढ़े, वो चाहता है कि हम इन्हीं बातों में उलझे रहें। इसलिए इस बात को भूल जाओ कि क्या हुआ, मिलजुल कर हम सब आगे बढ़ेंगे और भुग्गा की झोपड़ी उसे वापस देंगे। क्यों देंगे ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, काम है क्या और का। जमुनिया भाई तो जो बात कर रहे थे भाई, गांव के फायदे की बात कर रहे थे।
6: चल भाई, मैं अपने घर से थोड़ी सी घास फूस ले आया हूं, और भुग्गा को बोलो कि वो भी घर घर जाकर घास फूस बांस और झोपड़ी में लगने वाला सामान लोगों से मांग कर लाए।
1: हाँ, तो
6: और कर, और उसकी झोपड़ी आज ही तैयार करनी है।
1: हाँ, करनी है। हाँ, हाँ,
6: चलो सब लोग आ जाओ, मदद करो। चलो चलो आ जाओ।
1: अरे
3: का भैया भुग्गा, कोनो जरूरत तो नहीं है हमारी? घर में कुछ खाने पीने को है या नहीं? मैं लाऊं कहीं से?
7: जमुनिया बहन, मुझे तो पहले से ही शक था कि ऐसा कुछ जरूर होने वाला है, इसीलिए खाने पीने की चीजें मैंने पहले से ही बचा कर रखी हुई हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है, और ऊपर से तुमने ये छप्पर भी तो बनवा दिए हैं बहन। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम जाओ बहन।
8: अरे सुनो रे, दीवान जी आ रहा है। ए जल्दी से चारपाई मां, चारपाई ला जल्दी से।
9: जी
8: पूछा
9: चारपाई।
10: जय राम जी की,
8: जय राम जी की दीवान जी।
1: जय राम जी की भैया, जय राम जी की। हाँ तो तुम सभी हमारे ईंट के भट्टे पे काम करत हो। बहुत ही बढ़िया। अब हमें ये बताओ कि तुम में फतेहपुर गांव का कौन कौन है?
11: ऐसे क्यों पूछ रहे?
1: जितना पूछा जाए उतना ही, उससे ज्यादा चोंच मत खोलो तुम।
11: पर बात का है मालिक।
1: बात बात की बात छोड़ो, साफ साफ बताओ कि फतेहपुर गांव के कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं?
12: एक तो मालिक मैं हूँ, मैं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ मालिक। और बाकी तो सब जो लोग फतेहपुर के ही हैं। हाँ, मैं बाहर से आया।
1: सुनो, फतेहपुर वाले जितने यहाँ काम कर रहे हैं हमारे इस ईंट के भट्टे पे, वो सब लोग ठीक से सुन लो। कल से तुम्हारी नौकरी खत्म।
11: अरे
1: सुनो, सुनो, अब तुमको ईंट के भट्टे पर काम करने की जरूरत नहीं है।
10: मालिक जी का कह रहा है।
1: और हाँ, ए तुम जो बाहर से आए हो, तुम इस बात का खास ख्याल रखोगे कि ईंट के भट्टे पर फतेहपुर वाला कोई भी काम नहीं करेगा। फतेहपुर वालों फिर से सुन लो, कल से तुम सबकी यहाँ जरूरत नहीं है। अरे कल से हमारे ईंट के भट्टे पर फतेहपुर की चिड़िया भी काम नहीं करेगी। ठीक
12: दीवान जी, अरे तनिक हमारी भी सुन लो। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना बनाई है कि जामे आदमी को काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, काम आदमी को ढूंढ रहे है।
1: अच्छा,
12: आपको मालूम है
13: भैया।
12: और जय बात से हम आचू आपको बता देना चाहते कि आपके भट्टे पे हमारे यहाँ से कोई नहीं जाओगे। और सुन लो, और भट्टे पर बाहर के कोई भी आदमी को काम भी नहीं करने दिए जाएगो।
13: और क्या सही
12: है।
1: अच्छा,
12: हम देखेंगे कैसे भट्टा चलाते हो अब।
1: अच्छा,
13: और क्या।
12: अरे हाँ,
1: लोगों की ये हिम्मत।
12: बिल्कुल
1: हाँ।
12: अरे चिल्लाते रहो, चला के देख लो भट्टा।
14: अरे अरे दीदी रुकिए, मैं देखती हूँ कौन है। कौन है।
15: मैं हूँ।
14: अरे तुम यहाँ क्या लेने आए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जो कुछ भी तुमने जमुनिया दीदी के साथ किया है, क्या उसे माफ किया जा सकता है। मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, और कम से कम इस घर में मुझे चैन से जीने दो, और जमुनिया दीदी की सेवा करने दो। तुम नहीं जानते कि जमुनिया दीदी ने ही हमें दीवान की कैद से निकाला है।
15: अरे मुझे समझ में आ गया है। अगर तू नहीं चाहेगी तो मैं चला जाऊंगा, पर भाभी के एक बार पैर छू लेने दे। मैं सचमुच बहुत कमीना आदमी था जो अपने हीरा जैसे भाई को खा गया।
3: कौन है भाई, किससे बात कर रही हो।
14: इसका नाम सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा दीदी, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी रात खराब हो। अच्छा होगा कि ये यहां से चले जाए।
3: कौन है, करण है क्या।
14: हाँ दीदी।
15: भाभी मैं आपका नालायक करण ही हूँ, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ।
3: करण, तुम वाकई माफ करने लायक हो नहीं, लेकिन अगर तुम्हें माफ नहीं करूंगी तो तुम एक अच्छे आदमी नहीं बन सकते।
15: हाँ भाभी।
3: इसलिए तुमको माफ करने की मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम उन्हें मानोगे तो ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ।
15: मुझे हर शर्त कबूल है भाभी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा।
3: तो करण, मेरी पहली शर्त
15: जी,
3: जिस पट्टे पर तुम्हारे भैया रतन ने खेती की, रात दिन एक किया, कल से तुम उसमें काम करोगे।
15: हाँ।
3: सुबह से शाम तक
15: जी।
3: दूसरी शर्त, दारू को हाथ नहीं लगाओगे। तीसरी शर्त, 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे बिना झुलन बाबा से पूछे। और आखिरी और सबसे बड़ी शर्त, मेरी देवरानी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाओगे।
15: मुझे सब कबूल है भाभी, मुझे सारी शर्तें कबूल है।
3: तो ठीक है। गुरुजी प्रणाम।
16: प्रणाम प्रणाम। आओ आओ बेटा आओ, खुश रहो जमुनिया। देखो देखो, ये तुम्हारे सपनों का स्कूल।
3: मगर ये तो बहुत थोड़े बच्चे हैं गुरुजी, इससे इस गांव का क्या भला होगा। लगता है जिस तरह चुनाव के लिए घर घर जाना पड़ा था, वैसे ही बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी घर घर जाना पड़ेगा।
17: सुनो अम्मा, भाई साहब आप भी, सब लोग इधर आना, मेरी बात सुनना जरूर।

0: बात करनी है।
1: देखो भैया, भला अपना ही है, इन बच्चों का बचपन अगर सुधर गया तो जवानी और बुढ़ापा अपने आप सवर जाएंगे, क्यों है ना? बिल्कुल, ये अपने काम आ सकते हैं। और मान लो किसी वजह से अपने काम नहीं भी आए तो कम से कम तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं रहेंगे, क्यों है ना? और सब लोग मिलकर कल एक सभा बुलाते हैं और पता करते हैं कि किन किन को पट्टा मिला है और वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको किस चीज की कमी है, उस चीज की उन्हें मदद भी की जाएगी, ठीक है? जयंत, ये सामान तुम्हारा है ना?
2: हाँ, इसको मेरा। थैंक यू
3: मिस्टर जयंत। आप तो इस गांव से प्रभावित थे कि एनजीओ खोलकर यहीं बस जाए और इस गांव की तस्वीर बदल कर रख दे, तो क्या हो गया अचानक जो शहर की तरफ चल दिए?
4: अरे कुछ नहीं शिल्पी, जमुनिया ने इनका दिल तोड़ दिया।
3: अच्छा,
4: अभी का मन नहीं लगता यहाँ।
2: देखो मेगा, बात का बतंगड़ मत बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है और ये तो सब जीवन में चलता रहता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब सच नहीं है, पर ये इतना बड़ा सच भी नहीं है कि मैं किसी तरह के तनाव में आ जाऊं या कोई बड़ा फैसला ले लूं।
3: पर एक बात तो है जयंत जी, कि आपको जमुनिया ने बदल दिया है।
4: बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती थी।
3: और एक बात, आप आने से
5: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 17वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
6: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में श्री कृष्ण पर्व आयोजित किया गया। इस दौरान मटकी फोड़ सहित श्री कृष्ण लीलाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आज प्रदेश में 55 जिलों के 111 स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जानापाव में परशुराम श्री कृष्ण लोक का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए एक पोस्ट में कहा कि समाज सेवा, समरसता और सांस्कृतिक चेतना को जगाने में संगठन की भूमिका सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज सीहोर के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पावर ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई का शुभारम्भ करेंगे। इस दौरान कंपनी के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट भी होगा। नगर निगम भोपाल द्वारा साकेत नगर, एम्स अस्पताल और भानपुर क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाकर कुल 15 ट्रक विभिन्न प्रकार का सामान जब्त किया गया है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि छतरपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और पंजाब के लुधियाना में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
5: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

जिंदगी एक मधुर संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात जैसे भी हों, हर हाल में मुस्कुराते रहिए। और देखिए, आपकी मुस्कुराहट के खातिर ही तो हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो कृष्ण जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही स्वीकार कीजिए हेमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। माखन चुराकर जिसने खाया, वंशी बजाकर जिसने नचाया। माखन चुराकर जिसने खाया, वंशी बजाकर जिसने नचाया। खुशी मनाए उसके जन्मोत्सव की, जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। बहनों, ये उत्सव ही तो हैं जो हमारे दिल की खुशी को व्यक्त करते हैं, दिलों में प्रेम भरते हैं और जीवन में उत्साह का संचार करते हैं। और आज हम सभी श्रद्धा और विश्वास का पर्व जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और सभी कृष्ण प्रेमी आज व्रत रख रहे हैं और कन्हैया के आगमन की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। घरों में वंदनवार, द्वारे पर रंगोली और मन में असीम उत्साह। और क्यों ना हो, आखिर लाला जो आने वाला है। लाला जन्म की तैयारी में कई तरह के व्यंजनों की महक भी चारों ओर फैल रही है। तो बस अब इंतजार है कन्हैया के आगमन का। गाय का माखन, यशोदा का दुलार, ब्रह्मांड के सितारे, कन्हैया का श्रृंगार। सावन की बारिश और भादों की बहार, नंद के लाला कन्हैया को बारंबार प्रणाम। बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, रात में 12 बजे लड्डू गोपाल के जन्म के बाद पूजा अर्चना करते हैं। भगवान की बाल लीलाओं की झांकियां सजाई जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में 8वां अवतार लिया था। मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने और धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनका सुरक्षित गोकुल पहुंचना असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। बहनों, कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया था, पर आज भी हम उन्हें यशोदा के लाला के रूप में ही जानते हैं। माखन का कटोरा, मिश्री का थाल, मिट्टी की खुशबू और बारिश की फुहार, हर किसी के जीवन में भर दे खुशियां लाला जन्म का ये त्यौहार। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि आपके घर को भी आनंद, प्रेम और शांति से भर दे। कृष्ण जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। पलकें झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कान्हा, आपको याद करूं और दर्शन हो जाएं।

0: अभी बहनें सुन रही थी लता मंगेशकर के स्वर में गीतकार मजरूह की शब्द रचना, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म थी शागिर्द। पोषण, योग और फिटनेस, शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं, और यदि एक भी सुर बिगड़ता है तो हमारे जीवन की, हमारे स्वास्थ्य की लय भी बिगड़ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषण, योग और फिटनेस का संतुलन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहनों, पोषण, योग और फिटनेस एक स्वस्थ निरोगी जीवन के तीन सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। संतुलित आहार में शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का सही मिश्रण लें। ताज़ा भोजन ही करें, पैक्ड फूड, जंक फूड से दूरी बनाएं। घर पर बना शुद्ध सात्विक भोजन ही लें। पानी की कमी न होने दें, पर्याप्त मात्रा में पानी और फलों का जूस सेवन करें। शरीर को लचीला और मन को शांत रखने के लिए योगासन करें। तनाव मुक्त जीवन और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम का सहारा लें। बहनों, योग हमारे खान पान की आदत में सुधार करता है और शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। फिटनेस के लिए पर्याप्त नींद लें, शारीरिक गतिविधियां करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तनाव ना लें। फिटनेस के लिए सही पोषण आपके शरीर को ऊर्जा देने, मांसपेशियों की मरम्मत करने और बीमारियों से बचाने का मुख्य आधार है। इसीलिए फिटनेस के लिए जीवन में सही पोषण और योग को दिनचर्या में अवश्य शामिल करें, क्योंकि फिटनेस या शारीरिक स्वास्थ्य ही आपकी सच्ची पूंजी है। पोषण और योग के साथ साथ फिटनेस के लिए ये भी ध्यान रखें, हर दर्द का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं अपनों के साथ मुस्कुराने से। हर मंजर, हर दौर, हर हालात खूबसूरत होंगे, खुद पर भरोसा भी कुछ इस कदर होना चाहिए। और स्वयं पर भरोसा करना और आत्मनिर्भर बनना हमें सिखाती है हमारी शिक्षा। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्हीं में से एक नाम है सावित्री बाई फुले का। तो लीजिए, इसी विषय पर केंद्रित सुनिए ये वार्ता महिला शिक्षा की प्रणेता सावित्री बाई फुले। वार्ताकार हैं निधि श्रीवास्तव।
1: शास्त्रों में लिखा है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। प्राचीन भारत में नारी को अहम स्थान प्राप्त था। वे नारियाँ विदुषी हुआ करती थीं। शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में था, किसी प्रकार की नारी वर्जनाएँ नहीं थीं। किंतु मध्यकाल आते आते नारी की स्थिति में बड़ा अंतर आया। वह अपनी सामाजिक स्थिति में अवनत हो गई। समाज में अंध मान्यताएँ प्रबल होने लगीं। पुरुषवादी समाज में नारी स्वतंत्रता पर कई तरह की बंदिशें लगा दीं। परिणाम स्वरूप नारी शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ने लगी। साक्षरता में उनका प्रतिशत कम रहा। उनके लिए शिक्षा के उपादान बंद होते दिखे। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि भारतीय शिक्षा में नारियों की सम्मान

सम्मानजनक स्थिति ना बन पाई, जिसका प्रभाव और परिणाम तत्कालीन समाज में प्रतिबिंबित हुआ भी। नारी शिक्षा के पिछड़ेपण के रहते समाज में अनेक तरह की विरूपताएँ और विसंगतियाँ देखने को मिली हैं। इसलिए नारी शिक्षा न केवल आवश्यक है बल्कि प्रासंगिक भी। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बगैर शिक्षा के संभव नहीं है। भारत के समाज सुधारकों ने जब यह देखा कि भारतीय नारी न केवल शिक्षा में बहुत पीछे है बल्कि शिक्षा के अभाव में वह अनेक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कुप्रथा और शोषण से ग्रस्त है, इसलिए आवश्यक समझा गया कि स्त्री शिक्षा के लिए व्यापक प्रयास हों। नारी चेतना के संबंध में 19वीं सदी में कई सुधारवादी आंदोलन होना शुरू हो गए। राजा राम मोहन राय ने नारियों की पक्षधरता करते हुए ब्रह्म समाज की स्थापना की। तत्कालीन शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गोविंद रानाडे जैसे विद्वानों ने अनेक प्रयास किए। उसी दौर में कुछ नारियां भी शिक्षा की अलग जगाने के लिए घर से निकल पड़ीं। उनमें एक अग्रगण्य नाम सावित्री फुले का है। सन 1831 में महाराष्ट्र में जन्मी थीं। उन्होंने अपने बचपन में ही नारी निरक्षरता का जो रूप देखा तभी संकल्प ले लिया था कि इस अभिशाप को दूर करके रहेंगी। उस दौर में यह सोचना भी दुष्कर था और इस तरह के कदम उठाना एक क्रांतिकारी उपक्रम था, लेकिन उनके अंतर्मन में शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना था और वे करके रहीं। अपनी 18 वर्ष की उम्र में लड़कियों को एकत्र करके पढ़ाना शुरू किया। यह उनके प्रयोग की पहली सफलता थी। साथ ही वह भारत की पहली स्त्री शिक्षा के लिए पाठशाला बनी और सावित्री बाई फुले पहली स्कूल अध्यापिका बनी। स्कूल तो शुरू हुआ लेकिन यह अपने आप में एक बड़ा काम था। सावित्री बाई फुले समाज में स्त्रियों की दशा से परिचित थीं, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास भी था कि पुरानी मान्यताओं के चलते निसंदेह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने चुनौती इस बात की थी कि वह लड़कियों और उनके माता पिता को शिक्षा के प्रति किस तरह चैतन्य कर पाएंगी। उनकी इस मुहिम में उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले का सहयोग एवं मार्गदर्शन रहा, जो स्वयं स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। सावित्री बाई फुले घरों में संपर्क करती एवं मानसिकता का निर्माण करती, उनको अपनी साथी के रूप में संबोधित करती, बर्ताव करती, जिसका प्रभाव यह हुआ कि लड़कियां और उनके अभिभावक उनसे जुड़ने लगे। किंतु साथ ही दूसरी तरफ समाज का विरोध भी बढ़ता गया। कई कई बार उन पर गंदगी भी फेंकी जाती थी, किंतु वे इन सब बातों से विचलित नहीं हुई। सामाजिक अपमान से ऊपर उन्होंने अपने ध्येय को समझा। 1848 में स्थापित पुणे का यह बालिका स्कूल स्त्री शिक्षा की क्रांति का पहला स्तंभ बना। 1849 में पूना में ही एक प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र खोला गया। इन संस्थानों को देखकर न सिर्फ समाज में एक नया दृष्टिकोण पैदा हुआ बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रति चेतना जागी और छोटे मोटे रूप में स्त्री शिक्षा के केंद्र शुरू होने लगे। उन्होंने अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से समाज को जोड़ने का भगीरथ प्रयत्न किया। 1852 में उन्होंने दलित परिवारों की बालिकाओं को पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक स्कूल प्रारंभ किया। उन्होंने महसूस किया कि स्त्री शिक्षा में अन्य दूसरे कारक भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जैसे छुआछूत, बाल विवाह, असमानता आदि। सर्वप्रथम इन कुरीतियों को दूर किया जाना समीचीन होगा। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, उसके माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद की। उस समय लोगों का काव्य प्रेम परस्पर जोड़ने का एक साधन हुआ करता था। इस बात को समझते हुए उन्होंने कविताएं लिखना और सुनाना शुरू कर दिया, जिसमें मानवतावाद, समानता, भाईचारा और शिक्षा के महत्व को आवाज दी। इनकी प्रेरणा से कुछ अंचलों में स्वयं महिलाओं ने आगे आकर स्त्री शिक्षा के लिए कदम उठाए। पंडित रमाबाई, जमुनाताई जैसे अनेक नाम इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अग्रगण्य रहे। धीरे धीरे स्त्री शिक्षा का विकास होने लगा। अंग्रेज सरकारों ने भी परिस्थितियों को समझा और यह स्वीकार किया
कि भारतीय जन

0: मानस के साथ कुछ बदलाव भी आवश्यक हैं। सावित्री बाई का तर्क यह था कि भारत में स्त्री शिक्षा देश के भविष्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि महिला बच्चों की पहली शिक्षिका हुआ करती है। यदि महिलाओं को शिक्षा से नहीं जोड़ा गया तो हम किसी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। सुखद संयोग की बात यह रही कि उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले के स्त्री शिक्षा विस्तार में कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान किया। देश में महिला शिक्षा के लिए नए युग की आवश्यकता थी। यदि उन दिनों यह शुरुआत ना हुई होती तो संभव है कि आज हम इतना विकास नहीं देख रहे होते। आज महिलाओं की जो सुदृढ़ता है उसके बीच कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले के प्रयास भी रहे हैं। महिला शिक्षा जीवन को अधिक स्वतंत्र व आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने सहयोगी है। स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई है, लेकिन उस समय की कल्पना जब करते हैं तो आज की वर्तमान स्थिति देखकर कुछ आश्चर्य लगता है। सावित्रीबाई के योगदान को सम्मानित करने की दृष्टि से उनके नाम पर विभिन्न पुरस्कार प्रारंभ किए गए, सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किए गए तथा उनके नाम से विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, जो एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है, यह भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। यह उनकी यादों को सहेजे है। उनकी भावनाओं के अनुकूल शिक्षा के विस्तार के लिए 46 शैक्षणिक विभाग संचालित हैं। यही नहीं, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न स्थानों में विभिन्न संस्थान एवं स्मारक उनको समर्पित हैं। उनका यह कथन कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है, नारियों में चेतना जागृत करने के लिए यह वाक्य स्फूर्ति भरता रहा। निश्चित ही नारी शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले का योगदान स्मरणीय है। ऐसी विभूतियाँ अपने कृतित्व के माध्यम से जो सृजन छोड़ जाती हैं वह राष्ट्र के लिए धरोहर बन जाती है। नारी शिक्षा की ज्योति जलाने वाली श्रद्धे सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन।
1: अभी बहने सुन रही थी वार्ता महिला

बहनों, हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट को भजते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।

0: सा, दोनों में वो कुछ आधा सा।
1: अभी बहनें सुन रही थीं लता मंगेशकर के स्वर में ये प्यारा सा गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। अपनी जिंदगी के चित्रकार खुद बनिए और जो भी जी चाहे रंग भरिए। बहनों, अपनी जिंदगी में रंग भरने और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्टार्टअप इंडिया योजना। यह योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे 16 जनवरी 2016 को देश में नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। यह योजना पात्र उद्यमियों को कर में छूट, वित्तीय सहायता और आसान पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है। युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला बनाने की बजाय नौकरी देने वाला बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नए और क्रिएटिव आइडियाज, आर्थिक सहायता और सही दिशा देना, कर में छूट, पेटेंट में तेजी और स्वप्रमाणीकरण इस योजना की विशेषताएं हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर जाकर योजनाओं, पात्रता, लाभ और पंजीकरण की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के भारतीय नागरिक जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इसके लिए पात्र हैं। तो बहनों, जरूर लाभ लीजिए स्टार्टअप इंडिया योजना का और भर लीजिए अपने सपनों में रंग। हाथों में हुनर और उम्मीदों की उड़ान, हाथों में हुनर और उम्मीदों की उड़ान आत्मनिर्भर बनकर बढ़ाएंगे देश का मान। बहनों, धैर्य वह गुण है जो हमें हर तूफान के बाद भी स्थिर खड़े रहने की ताकत देता है। इसीलिए परिस्थितियां कोई भी हों, हर हाल में धैर्य बनाए रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, फिर जो होगा अच्छा ही होगा। और यही संदेश हमें श्री कृष्ण भी देते हैं। श्री राधे जी का प्रेम, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास, इन सब से मिलकर ही तो बनता है जन्माष्टमी का त्यौहार खास। तो कृष्ण जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही अब अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
3: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
4: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
8: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,
9: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
8: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
8: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
8: आपके साथ
6: आकाशवाणी।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये सोहर।

नीलम तिवारी के स्वर में अभी आप ये सोहर सुन रहे थे। लोक संगीत कार्यक्रम में कुछ कृष्ण भजन हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली प्रस्तुति राजू राजा चौहान की आवाज़ में।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम कुछ भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। कलाकार हैं रविंद्र दीक्षित। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रविंद्र दीक्षित के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रभु के चरण चिन्ह अब भी पड़े हैं हमारी वीथी में, झुकी है कदम की एक डार, हवाओं में उड़ता है पीतांबर, कभी कभी एक सिहरन सी उठती है यमुना के शांत पानी में। वो राग, वो लीला, वो भाव कितने रूपों में जागता है आज भी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, कृष्ण एक महाराग हैं जिसकी अनुगूंज इस धरती पर सदियों से बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की यात्रा बांसुरी से पांचजन्य के बीच संपन्न होती है। इस यात्रा में एक रस है, छंद है, पुकार है, प्रार्थना है, जो वेणु से उठती है और आगे बढ़ती हुई पांचजन्य के माध्यम से संभवामी युगे युगे का उद्घोष करती है। अद्भुत है श्री कृष्ण का चरित्र। कृष्ण संपूर्णता का नाम है। उन्हें नमन करते हुए आइए शुरू करते हैं फिल्म संगीत का आज का कार्यक्रम।

श्रोताओं, श्री कृष्ण स्पष्ट हैं और रहस्य भी हैं। वो योगीश्वर हैं और गृहस्थ भी। वो संत हैं तो योद्धा भी। वो चिंतक हैं तो सन्यासी भी। वो लिप्त हैं तो निर्लिप्त भी। उसी कृष्ण तत्व को नमन करने का दिन है आज।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर बाद सीहोर में क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफार्मर को रोल आउट करेंगे। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह इकाई एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगस्त 2025 में इस संयंत्र का भूमि पूजन किया था और अब करीब 13 से 14 महीने में यहाँ उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यहां 220 केवी से लेकर 1200 केवी श्रेणी के पावर ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। इकाई की उत्पादन क्षमता हर माह 35 पावर ट्रांसफार्मर तैयार करने की होगी। इतनी बड़ी क्षमता वाली इकाई एक ही स्थान पर स्थापित होने से देश में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों के निर्माण को मजबूती मिलेगी। आज देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। उन्होंने कामना की कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा के इस पवित्र अवसर पर सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालकृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूप में पधारे नन्हे मुन्ने बच्चों को माखन खिलाकर उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। साथ ही कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ देखी। डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के प्रमुख देवस्थल धार्मिक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं।
2: देवस्थान हमारे लिए आजकल धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहे हैं। ऐसे में सुशासन के लिए हमारे जैसे बाबा महाकाल के महालोक के बाद आज पूरे प्रदेश में वातावरण बदला है। वहाँ 2022 तक 60-70 लाख यात्री आते थे। गत वर्ष 14 करोड़ का आंकड़ा था, इस साल 20 करोड़ का आंकड़ा हुआ है। तो ऐसे में बाकी देवस्थान पे भी यात्री जाए और तीर्थाटन के माध्यम से हमारे राज्य की इकोनॉमी बढ़े, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे प्रत्येक काम को इसी रूप में हम बढ़ा रहे हैं।
1: प्रदेश के सभी जिलों में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आगरमालवा में यादव व गवली समाज द्वारा संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की भव्य विशाल पालकी यात्रा निकाली गई। जबलपुर में शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में भी शहर के मंदिरों में उत्साह और भक्ति का माहौल है। बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जबकि मंडला में

0: नर्मदा का जल स्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छतरपुर के कुटनी और जबलपुर के बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल में भी आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के सभी आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पहले आओ पहले पाओ राउंड की प्रक्रिया कल से प्रारंभ होगी, जो 7 सितंबर तक चलेगी। आगरमालवा में गोकवच अभियान के तहत करीब 100 गोवंशों के गले में रेडियम का बेल्ट पहनाया गया, जिससे रात के अंधेरे में सड़कों पर बैठी गायें दूर से दिखाई देंगी। और पन्ना में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा भगवान जुगल किशोर जू का जन्मोत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

0: इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
3: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।

0: भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRHindiNews को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को

0: रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, जन्माष्टमी का दिन और आपके बहुत सारे खतों के साथ आपकी फरमाइशें लेकर हाजिर हूं मैं। जाहिर तौर पर आपको इंतजार होगा, तो चलिए इंतजार के इन पलों को और नहीं बढ़ाते और मैं उठाती हूं चिट्ठियां जिनमें लिखी हैं आपकी फरमाइशें। ये पहली चिट्ठी आई हुई है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की ओर से। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। राजा बाजार चौक बहिया आरा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी केशरी, बीना केशरी और प्रतिज्ञा केशरी। और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार शब्बीर अहमद और संगीतकार हिमेश रेशमिया। फिल्म का नाम है ओ माई गॉड। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता गम्हाणकर, अर्जुन गम्हाणकर टुकटुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, सुमित गम्हाणकर, ध्वनि गम्हाणकर परी। ये चिट्ठी आई हुई है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

संदेश के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, ये दतरेंगी के रहने वाले हैं। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी

पिपरिया से दुर्गा राम साहू। इसी गीत को पसंद करते हैं। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लगान फिल्म का गीत। आवाजें आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की हैं। बोल जावेद अख्तर के हैं और धुन AR रहमान की।

0: और अब हम आपको सुनवाते हैं किसना फिल्म का गीत। आवाजें सुखविंदर, इस्माइल दरबार और आयशा की हैं। शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत इस्माइल दरबार का है। अनुरोध आप सबका है, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जूंधले और आरती जूंधले, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण और रमेश मिगलानी।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

इसी गीत के लिए फरमाइश आई थी मानोरा वाशिम से, ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस गिरी, प्रणीता, शैलेश, सोनम और धनुषपुरी, और पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की ओर से।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV F7 के

0: 17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में श्री कृष्ण पर्व आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण प्रदेश में पड़े, उन स्थलों को मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण पाथे के रूप में विकसित कर रही है। साथ ही भगवान श्री राम से जुड़े पावन स्थलों को श्री राम वनगमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। भोपाल के मास्टर प्लान से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भोपाल की कठिनाइयों और उससे जुड़े विषयों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जो भी बेहतर रास्ता होगा, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि छतरपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और पंजाब के लुधियाना में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी छतरपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, रात 8:15 और रात 9:45। शाम 6 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम खेल जगत। इसमें आज आप सुनेंगे पंकज कुमार जैन के साथ की गई भेंटवार्ता, खेलों के विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10:00 और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित गणपति भट्ट का ख्याल गायन राग बागेश्री। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का निर्धारित क्रम, आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, OTT वेब्स और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हो रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5:00 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण पाथे के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली विरासत से परिचित हो और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। भारत के अंतरिक्ष सफर में एक और शानदार उपलब्धि हासिल हुई है। क्रायोजेनिक इंजन ने अपना निर्धारित संचालन पूरा किया और EOS-05 को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही GSLV-F17 EOS-05 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस माह राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला एशिया कप में एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलते हुए अपनी शानदार आक्रामकता से नया मील का पत्थर स्थापित किया है। उन्होंने 64 गेंदों में 124 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का है।

उद्धरेदात मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। साथियों, ये श्लोक माधव द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया अध्याय 6 का 5वां श्लोक है। इसका अर्थ है, मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को निराश या नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। माधव, जो कि एक अन्य नाम है श्री कृष्ण का, लेकिन साथियों श्री कृष्ण को माधव नाम मधु नामक दैत्य का वध करने के कारण नहीं मिला था, बल्कि उस दैत्य का वध करके तो श्री कृष्ण मधुसूदन कहलाए। तो आखिर किस तरह श्री कृष्ण माधव कहलाए, जानेंगे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार साथियों, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ अभिदीप सुहाने, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के युववाणी कार्यक्रम में। तो साथियों, इस सब की शुरुआत हुई ब्रह्मा जी से, जिनके मानस पुत्र हुए ऋषि अत्रि, और अत्रि ऋषि के पुत्र हुए सोम, जिनको चंद्रमा भी कहा गया। इन्हीं सोम से शुरुआत हुई चंद्रवंश की। चंद्रवंश में आगे चलकर महाप्रतापी राजा ययाति हुए, जिनको उनके ससुर गुरु शुक्राचार्य ने असमय बूढ़ा होने का श्राप दे दिया था। ययाति ने जब अपने बड़े पुत्र यदु से उसकी जवानी मांगी तो यदु ने उन्हें मना कर दिया, जिससे नाराज होकर ययाति ने अपने पुत्र यदु को श्राप दिया कि तुम्हारा कोई भी वंशज चक्रवर्ती राजा, उदाहरणार्थ के लिए हस्तिनापुर जैसे मुख्य सिंहासन का राजा, नहीं बन पाएगा। और फिर अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को राज्य दे दिया, जिससे कुरुवंश चला, जिसमें कौरव और पांडव हुए। तो वहीं दूसरी ओर पिता के श्राप के बाद यदु ने एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य की स्थापना की, जो यदुवंश कहलाया। साथियों, यदु की

कई पीढ़ियों के बाद इस वंश में राजा देवश्रत्र के पुत्र मधु का जन्म हुआ। राजा मधु स्वभाव से सहज व मधुर तो थे ही, मगर साथ ही अत्यंत प्रतापी, धार्मिक और प्रजापालक सम्राट भी थे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर एक वन की स्थापना की, जिसे मधुवन कहा गया। फिर हुए राजा मधु के पुत्र लवण। राजा मधु के संन्यास पर जाने के बाद मधुवन पर उनके पुत्र लवण ने राज किया। अब लवण जो थे वो राजा मधु से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे, क्रूर और हिंसक। इस कारण मधुवन की प्रजा अत्यंत परेशान रहने लगी। समय बीता तो लवणासुर का भी अंत हुआ, जो किया भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने, और मधुवन को काट कर वहां नगरी बसाई, जिसे नाम मिला मधुपुरा। कुछ समय तक राम जी के वंशजों ने मधुपुरा पर राज किया। उसके बाद वहां राजा मधु के वंशज वापस आ गए, लेकिन उसी वंश की एक शाखा का एक अधर्मी पुत्र अपने पिता को कारावास देकर छल से राजगद्दी पर बैठ गया। राजा मधु का साम्राज्य पहले मधुवन से मधुपुरा बना और फिर मधुपुरा से मधुरा कहलाया जाने लगा। मधुरा में अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था कि एक रात वहां आकाशवाणी हुई कि इस कुल में एक बालक जन्म लेगा जो अत्याचार का अंत करेगा। फिर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की एक अंधेरी रात में मधुरा की एक काल कोठरी में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने कुछ वर्षों बाद उस अधर्मी राजा जो छल से राजगद्दी पर बैठ गया था उसका वध किया। उस अधर्मी राजा का नाम था कंस और वध करने वाले का नाम था कृष्ण। साथियों, जब श्री कृष्ण ने मधुरा, जो बाद में मथुरा कहलाया जाने लगा, वहां के लोगों में अपने पूर्वज राजा मधु की मधुरता के साथ साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया, तो प्रजा ने उन्हें अत्यंत पारिवारिक व गौरवशाली नाम से पुकारा, माधव, अर्थात राजा मधु के वंशज। साथियों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की जिस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसे ही हम आज जन्माष्टमी के तौर पर मनाते हैं। इस आशा के साथ कि जिस प्रकार मथुरा में जन्म लेकर श्री कृष्ण ने वहां के लोगों को कष्ट से मुक्त किया, उसी प्रकार प्रभु हमारे कष्टों को भी हर लेंगे। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब आपको सुनवा देते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म झूठा ही सही से ये प्यारा सा गीत। आवाज़ थी चिन्मई और जावेद अली की। अब्बास टायरवाला की शब्द रचना को संगीत में पिरोया था एआर रहमान ने। साथियों, हमारे देश की पहचान केवल बड़े उद्योगों से नहीं बल्कि उन कारीगरों और शिल्पकारों से भी है जो अपने हुनर से हमारी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखते हैं। इन्हीं के सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। ये योजना क्या है और क्या है इसके लाभ, आइए जानते हैं। साथियों, इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके कौशल के आधार पर पहचान, प्रशिक्षण, आधुनिक औजार और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने काम को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। साथियों, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, नाई, दर्जी जैसे अनेक पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना के माध्यम से कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे आधुनिक तकनीक और बेहतर कार्य पद्धतियों को अपनाकर अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। आधुनिक औजारों की सहायता मिलने से कारीगर अपने काम को अधिक कुशलता से कर सकते हैं साथियों, और अपनी उत्पादकता तथा आय बढ़ाने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, योजना में पात्र लाभार्थियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा का भी प्रावधान है जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक निवेश कर सकें। साथियों, आज केवल अच्छा उत्पाद बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे बाजार तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसलिए कारीगरों को डिजिटल लेन देन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार से जुड़ने की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। हमारे कारीगर केवल वस्तुएं नहीं बनाते बल्कि हमारी सदियों पुरानी कला, संस्कृति और परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उनके हुनर को सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथियों, हमें अपने आसपास के पात्र कारीगरों और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी देकर उचित माध्यम से इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि पारंपरिक हुनर को आधुनिक अवसरों से जोड़कर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। साथियों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमें ये संदेश देती है कि हुनर कभी भी छोटा नहीं होता। सही पहचान, प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर यही हुनर आत्मनिर्भरता और समृद्धि का आधार बन सकता है। आइए हम अपने विश्वकर्माओं के सम्मान और सशक्तिकरण में सहभागी बनते हैं। तो साथियों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रम की दूसरी चर्चा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवा देते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पाप का ये गीत। आवाज थी राहत फतेह अली खां की। अमजद इस्लाम अमजद के बोलों को संगीत में पिरोया था शाही ने। साथियों, भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं होती, बल्कि ये हमारी संस्कृति, पहचान और भावनाओं को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन भी होती है। हमारी भाषाएं और बोलियां हमें हमारी विविधता में एकता की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। साथियों, भारत अनेक भाषाओं और बोलियों का देश है। अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं और बोलियां वहां की संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं की पहचान होती हैं। बोली किसी क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित भाषा का स्थानीय रूप होती है। इसमें उस क्षेत्र के लोगों की जीवन पद्धति, लोक अनुभव और सामाजिक परंपराओं की झलक दिखाई देती है। हमारी मौखिक परंपराएं भी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। साथियों, लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें, पहेलियां, भजन और पारंपरिक

पारंपरिक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती रहती हैं। साथियों, हमारे बुजुर्गों के पास अनेक ऐसी लोक कथाएं, गीत और कहावतें हैं जिसमें जीवन के अनुभव और ज्ञान छुपे हुए होते हैं। इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, आधुनिक तकनीक और बदलती जीवन शैली के कारण कई छोटी भाषाएं और बोलियां धीरे धीरे कम प्रचलन में आ रही हैं। यदि समय रहते इन्हें सहेजा ना गया तो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकता है। भाषा और बोली को बचाने का सबसे सरल तरीका है हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में सम्मान पूर्वक बोलें, जिस प्रकार हम अंग्रेजी बोलते हैं, और बच्चों को भी अपनी मातृभाषा तथा स्थानीय बोली से जोड़ कर रखें। साथियों, हमें लोकगीतों, लोक कथाओं, कहावतों और पारंपरिक ज्ञान को लिखित, ऑडियो और वीडियो माध्यमों से सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे परिचित हो सकें। साथियों, विद्यालय और समाज भी भाषाओं व बोलियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्थानीय भाषा में कहानी, कविता, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ सकता है। किसी भाषा या बोली को छोटा या बड़ा समझना उचित नहीं है। प्रत्येक भाषा अपने साथ एक इतिहास, संस्कृति और लोगों के अनुभवों को लेकर चलती है। सभी भाषाओं और बोलियों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोली का सम्मान करेंगे, मौखिक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे और अन्य भाषाओं एवं बोलियों के प्रति भी सम्मान की भावना रखेंगे। साथियों, भावनाएं, बोलियां या मौखिक परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत की जीवंत धरोहर हैं। भाषा बचेगी तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो हमारी पहचान भी बनी रहेगी। तो साथियों, अपनी भाषाओं और बोलियों को सम्मान दें, उन्हें बोलें, सीखें और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं, ताकि जिस गौरवता से हम अंग्रेजी बोलते हैं उस गौरवता से हमारी लोक भाषा भी बोली जा सके। तो साथियों, ये थी आज के कार्यक्रम की तीसरी और आखिरी चर्चा विषय भाषाएं, बोलियां और मौखिक परंपराओं पर। लीजिए अब सुनिए ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिक्की वायरस से ये प्यारा सा गीत। आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, शब्द रचना एवं संगीत था हनीफ शेख का। आइए साथियों, अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है UPSC EPFO असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। पदों की कुल संख्या 80 है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट upscionline.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मैं जुड़ा हुआ था आपके साथ अभिदीप सुहाने। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
0: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना,

0: एसबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।
8: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
9: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में युगांधर फिल्म का गीत। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं कसम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ ने इस गीत को गाया है। गीत लिखा है अनजान ने और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

अगला गीत श्रेया घोषाल और प्रणव कुमार विश्वास की आवाज़ों में है। स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोहित्रा का संगीत और फिल्म है कृष्ण और कंस।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लगान फिल्म का गीत। आशा भोसले, उदित नारायण, विशाली और साथियों ने इस गीत को गाया है। जावेद अख्तर ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं AR रहमान।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं वे दिनांक 6 सितंबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर्स 2660902 या 2660903 पर फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए। दिनांक 6 सितंबर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच। फ़ोन नंबर हैं 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण पाथे के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी अपने गौरवशाली विरासत से परिचित हो और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। भारत के अंतरिक्ष सफर में एक और शानदार उपलब्धि हासिल हुई है। क्रायोजेनिक इंजन ने अपना निर्धारित संचालन पूरा किया और EOS-05 को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही GSLV-F17 EOS-05 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस माह राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने महिला एशिया कप में एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलते हुए अपनी शानदार आक्रामकता से नया मील का पत्थर स्थापित किया है। उन्होंने 64 गेंदों में 124 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
0: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
0: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
0: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
0: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
0: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
0: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
2: जी,
0: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाईं
2: जी,
0: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
2: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की
0: जी। श्रोताओं जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
2: जी,
0: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
2: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
0: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
2: जी।
0: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
2: तो वे भारत क्यों आए?
0: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
2: जी,
0: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
2: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
0: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारत

0: जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
1: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
0: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की।
1: जी
0: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
1: जी
0: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
1: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
0: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
1: जी
0: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया, एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
0: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े, उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई।
1: जी
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहां भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की

0: तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
1: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
2: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
1: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
2: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
1: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
2: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
1: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी।
2: भाई बता दूंगा ना बेटी।
1: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
2: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
1: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
2: सच्ची भाई?
1: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी साहब, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी साहब। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा।
6: दासी।
7: जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी साहब को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है।

0: माँ का प्रसाद चरणामृत।
1: जी महाराज।
0: जाओ जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: गिरिध गोपाल का चरणामृत।
1: रानी सा की जय हो।
2: आओ सखी, भीतर आओ।
1: जी वो
2: क्या हुआ सखी, तनिक चिंतित सी लग रही हो।
1: वो कुछ नहीं।
2: कहूँ ना सखी, क्या बात है?
1: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
2: क्या, मेरे कान्हा का प्रसाद?
1: पर हमें तनिक शंका होती है।
2: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
1: रुकिए रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विष हुआ तो?
3: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई।
11: जय श्री कृष्ण।
12: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थीं, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
5: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मिड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: कितनी मधुर आवाज़। हाँ। सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए।
2: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा
3: यार।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
7: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
7: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
8: हाँ, ये बात तो ठीक है,
7: हो गई दुगनी। अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
7: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
2: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
2: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
5: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
3: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
8: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
2: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
9: 300 किलोग्राम?
7: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
2: और चींटी की मम्मी,
8: उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
3: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
2: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम सोचो डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
3: हाँ, कहिए 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
10: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
11: अभी आपने एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए खुद्दार फिल्म का गीत। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों ने इस गीत को गाया है, मजरूह ने लिखा है और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

जाग उठा इंसान, इस फिल्म का गीत सुना रहे हैं हम आपको आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत श्रेया घोषाल और मीका सिंह ने गाया है। ओ माय गॉड फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

और लीजिए, अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में आनंद राज आनंद का लिखा, अनु मलिक का संगीतबद्ध किया गीत, कृष्णा फिल्म से।

कार्यक्रम का आखिरी गीत रास्ते प्यार के फिल्म से, किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्येक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएँ बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले जानिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में। 9:30 पर खेल जगत में हम आपको सुनवाएंगे पंकज कुमार जैन से की गई भेंट वार्ता, खेलों के विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है रात्रि 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में आनंद लीजिए पंडित गणपति भट्ट के ख्याल गायन का। राग होगा बागेश्री।

कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। लोक संगीत में 9:15 पर सुनिए रामचरण सिंह और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर विज्ञान लोक में हम सुनवाएंगे डॉक्टर दीपक राज तिवारी की वार्ता क्या है भू विज्ञान। जिले की चिट्ठी का समय है 10:00। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर होगा 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर कल हम आपको सुनवाएंगे कपूर चंद्र नागर का क्लैरियोनेट वादन। राग है नट भैरव। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी 11:00 फिल्म संगीत से। आपकी फरमाइश का समय है 12:00 और दोपहर 2:30। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनेंगे जमुनिया धारावाहिक की 18वीं कड़ी। हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां रीवा केंद्र की होंगी। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। बुंदेली समाचार सुनवाएंगे 7:25 पर। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर दीपिका अग्रहार मुरुगरकर से की गई भेंटवार्ता खेती से थाली तक खाद्य प्रसंस्करण और हमारा स्वास्थ्य।

महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल कल रात्रि 8 बजे दिल्ली से रिले किया जाएगा। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश को पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर में नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट का किया लोकार्पण, बोले यह देश के इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम को ट्रांसफार्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश में भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व

0: कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीहोर में क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफार्मर को रोल आउट कर शुभारंभ किया। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह इकाई एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। डॉक्टर यादव ने यहां कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को लगातार नई गति मिल रही है। प्रदेश में नई इंडस्ट्रीज की शुरुआत से उत्पादन बढ़ता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनते हैं और राज्य की इकोनॉमी के साथ देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है।
3: सीहोर श्योर है, निवेश में सिक्योर है और रिटर्न एश्योर है। सच में देश के इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में ये पावर ट्रांसफार्मर यूनिट अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगी। हमारे पास इस मध्यप्रदेश की ग्रोथ के 5 दोस्त हैं: पैशन, पोटेंशियल, पॉलिसी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन। इतनी बड़ी फैक्ट्री का जो कहा गया देश ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री है, अब यहाँ की जो क्षमता भी बताई तो एक साल में 365 आप बनाएंगे। जब आज आप अब बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर की फैसिलिटी देंगे, वाकई ये अद्भुत है और 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगस्त 2025 में इस संयंत्र का भूमि पूजन किया था और अब करीब 13 से 14 महीने में यहां उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यहां 220 केवी से लेकर 1200 केवी श्रेणी के पावर ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। इकाई की उत्पादन क्षमता हर माह 35 पावर ट्रांसफार्मर तैयार करने की होगी। संस्कृति विभाग अंतर्गत श्री कृष्ण पाथेय न्यास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी 2.0 के वॉल वर्जन का लोकार्पण किया। इसमें लगभग 21 लाख वर्ष पूर्व तक की पंचांगीय गणनाओं का अध्ययन करने तथा आगामी लगभग 5 लाख वर्षों तक की कालगणना देखने की सुविधा विकसित की गई है। पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अवलोकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और अधिक परिष्कृत करने तथा प्राचीन काल की गणनाओं को इसमें समाहित करने का सुझाव दिया गया था। इस घड़ी में त्रेता युग, द्वापर युग से लेकर वर्तमान काल तक के विशाल कालखंड को भारतीय कालगणना के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाल कृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूप में पधारे नन्हे मुन्ने बच्चों को माखन खिलाकर उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। साथ ही कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखी। डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा, अब मध्य प्रदेश के प्रमुख देवस्थल धार्मिक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण पड़े उन स्थलों को मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण पाथेय के रूप में विकसित कर रही है। साथ ही भगवान श्री राम से जुड़े पावन स्थलों को श्री राम वनगमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण पाथेय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली विरासत से परिचित हो और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। प्रदेश के सभी जिलों में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। उधर उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान बांधवाधीश का राम जानकी मंदिर खोला गया, जहां 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नीमच में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगरमालवा स्थित

मुरली मनोहर मंदिर में आयोजित किए गए श्रीकृष्ण पर्व के अंतर्गत विशेष सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भक्ति गायन और श्रीकृष्ण केंद्रित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जा रही है। भोपाल, शिवपुरी, पन्ना, नर्मदापुरम, शहडोल, रायसेन, झाबुआ सहित सभी जिलों से जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में होगा। समारोह में प्रदेश भर से चयनित 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जबकि मंडला में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छतरपुर के कुटनी और जबलपुर के बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल, इंदौर में भी आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। उधर शिवपुरी में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बाद आज सिंध नदी में पानी का बहाव बढ़ने के बाद इस नदी पर बने मणिखेड़ा डैम के चार गेट खोल दिए गए। सीहोर जिले में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जल स्रोत भर गए हैं। शहडोल जिले में आज बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। छोटे बड़े सभी जलाशय और बांध लबालब भर चुके हैं। इस सीजन में पहली बार बाणसागर बांध 100% भर गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले की 12 वर्षीय छात्रा पीहू परस्ते प्रदेश के चुनिंदा प्रतिभावान बच्चों में शामिल किया गया है। 26 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर मिला। नर्मदापुरम जिले की मंडी प्रांगण पिपरिया में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 320 से अधिक नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। जबलपुर में नर्मदा तट ग्वारीघाट में आज नर्मदा नदी में पेट्रोलिंग के दौरान होमगार्ड जवानों से भरी मोटर बोट अचानक डूब गई। हादसे में सभी जवान सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। शिवपुरी, मुरैना जिलों की शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ राउंड कल से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और पांडुर्णा में सदियों पुराने प्रसिद्ध गोटमार मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। यह मेला इस साल 11 सितंबर को जाम नदी के किनारे लगेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन खां विवेक भैया की दो ही हाथ जोड़ के राम राम पहुँचे। और देखो भैया, आज कितना पवित्र दिना है कृष्ण जन्माष्टमी को। पूरी दुनिया अपने देश में कितने हर्षोल्लास के साथ भैया आज जो त्यौहार मनाओ जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जौन है भैया, जो एक बहुत पवित्र त्यौहार है, जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाओ जाते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी भादों के महीना की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी का और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में मनाओ जाते हैं। इसके लिए भैया अपन जानते ही हैं कि द्वापर युग में मथुरा के जो राजा कंस थे उनके अत्याचारण से मुक्ति दिलावे के लाने और सत्य की विजय धर्म की स्थापना के लाने भगवान कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के 8वीं संतान के रूप में कारागार जेल में जन्म लो तो भैया। और आज के दिन भैया रात के 12 बजे भगवान कृष्ण को जन्म मनाया जाते हैं। इसे आधी रात को शंख और घंटियों की गूंज के साथ

कान्हा का पंचामृत अभिषेक करो जाते हैं और माखन मिश्री को भोग लगाओ जाते भैया। जो भैया लोग भाग हैं बढ़िया व्रत रखत हैं, घर और मंदिर को सुंदर जहाँ की लाइटें से सजाते हैं, और बाल गोपाल जिन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं उनके लिए छोटे छोटे झूला भैया तैयार करते हैं। और भैया देखो, जो बात तो अपन जानती हैं कि भगवान कृष्ण के जो गीता के उपदेश हैं है ना, कितने प्रासंगिक हैं भैया, कि कर्म करो फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करो। और भैया कहते नहीं है कि जब जब दुनिया में भैया सत्य या अधर्म बढ़ा थे भैया, तब तब कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण और ऐसे अवतार आते हैं और उनको नाश करके अत्याचारियों को फिर से भैया सत्य की और न्याय की भैया जो विजय है जी, अपन कहते हैं ना कि अंत में भैया विजय जो न होते बस सत्य की और न्याय की होते भैया बा स्थापित होते। तो भैया आज इतनो पवित्र दिना है, और जब इतना पवित्र दिना है भैया तो निश्चित है कि अपने सब भैया बहन हैं जो कि भगवान कृष्ण के उपासक हैं, आज को दिन भर को व्रत रखते हैं और रात्रि 12 बजे के बाद जब कृष्ण भगवान को जन्म हो जाते हैं अपने भैया पे व्रत खोलते हैं। और कृष्ण भगवान जिन्हें कान्हा भी कहते हैं उन्हें सुंदर पीले या रेशमी वस्त्र पहना के मुकुट वैजयंती माला और मोर पंख से सजाए जाते हैं, उन्हें माखन मिश्री धनिया की पंजीरी और पंचमेवा को भैया भोग लगाए जाते हैं। मंदिरों और घरों को भैया लोग बाग अपने बढ़िया रंग बिरंगी रोशनी और फूलन से सजाते हैं और भगवान के बाल स्वरूप की भैया सुंदर झांकी भी निकाली जाते हैं। तो भैया अपन कहाँ चाहते हैं कि बढ़िया हर्षोल्लास के साथ जो कृष्ण जन्माष्टमी को त्यौहार अपन मनाएं, सब लोग बढ़िया प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी अपन ऐसे ही एक कृष्ण जन्म के गीत से करते हैं।

तो भी यारो, अभी अपन ने सुने जो कृष्ण जन्म गीत, और ये गाओ तो ममता गोस्वामी ने। और भैया देखो, आज के दिनों हालफुल को दिना है, और जब हालफुल को भैया दिना होते तो उस समय अगर कछु और हालफुल की बातें हो जाएं, तो ऐसी एक हालफुल की बात है पीएम स्वनिधि योजना की भैया, जो रेहड़ी पटरी पे और सड़क किनारे सामान बेचे वाले अपने छोटे व्यापारी भैया बहनरे होते हैं, उनके लाने सरकार ने बिना कोनो गारंटी के, मतलब उन्हें कोनो गारंटी जमानत न देने पर है ऊपर उन्हें ऋण उपलब्ध कराव जाते। और जा एक भारत सरकार की योजना है, इमें जो पहला ऋण होते वो 10,000 रुपया को है, जो 1 साल से 12 महीना के लाने होते। और दूसरा ऋण जो है भैया, अगर पहला ऋण समय पे चुकता कर दो तो दूसरा ऋण 20,000 रुपया तक को होते, और जो 18 महीना की अवधि के लाने होते। और अगर समय पे अपन ने जो दूसरा ऋण भी चुकता कर दो तो तीसरा ऋण जो होते वो 50,000 रुपया को होते, और वह 36 महीना की अवधि के लाने होते। ब्याज सब्सिडी भी पे होते, समय पे ऋण चुकाए वाले जो भैया बहन रहे उन्हें सालाना 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाते है। और डिजिटल लेन देन करे पे प्रतिमाह कैशबैक की सुविधा भी मिलत है। और ई में जो पात्रता है भैया, वो जो शहरी क्षेत्र के जो भी अपने रेहड़ी पटरी पे काम करे वाले भैया बहन रहे हैं वही के लाने पात्र हैं। और उनके पास बस अपने जो भी स्थानीय, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, उनके द्वारा जारी बैंडिंग सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड होना चाहिए। और आज को ज़माना तो भैया देखो ऑनलाइन है, सो जो आधिकारिक पीएम स्वनिधि पोर्टल है ऊपर ऑनलाइन आवेदन अपन कर सकते हैं। और अगर अपन चाहें तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं या नज़दीकी बैंक शाखाएँ हैं उनके माध्यम से भी अपन आवेदन जमा कर सकते हैं। तो भैया अपन कहाँ देखो, जिनको भी भैया बहनरे हैं जो अपनों ऐसा काम करते हैं, तो उन्हें को योजना को भैया फ़ायदा उठा लें। अब सरकार देखो, उन्हें तो तमाम योजनाएं बनाई हैं, लेकिन बस उन योजनाओं को लाभ किए लेने हैं उके

0: आगे तो अपन का खुद ही आने पर है, तो ये बात को अपन ध्यान रखें और आगे बढ़े भैया। और देखो अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाएं, उससे पहले सुने जो संदेश।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी, मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: और भैया जैसा अपन को पता ही है कि देखो आज जन्माष्टमी को दिना है और जन्माष्टमी पे अपन ने कितनों बतकाव करे है, और ऐसी कछु और विशेष बात अपन का सुनने का मिल जाए भैया, पर का पूछने पर तो सोने पे सुहागा है। तो अपन सुन रहे हैं जब वार्ता, जब अंधकार के बीच जन्मा प्रकाश, और वार्ताकार हैं श्रीमती अनीता चौधरी। तो अपन सुने थे जब वार्ता।
5: भारतीय संस्कृति पर्वों से समृद्ध है। यहाँ प्रत्येक पर्व अपने भीतर केवल उत्सव का उल्लास ही नहीं बल्कि जीवन का कोई गहन संदेश, कोई शाश्वत मूल्य और कोई आध्यात्मिक चेतना भी समेटे होता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि का गहन अंधकार और उसी अंधकार के मध्य प्रकाश का अवतरण। यह केवल एक दिव्य जन्म की कथा नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन की एक ऐसी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो युगों से मानवता को यह विश्वास दिलाती आई है कि जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की चेतना जागती है, जब अन्याय का अंधकार गहराता है तब सत्य का प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। ऐसे समय में देवकी की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भारतीय परंपरा में यह प्रसंग अत्यंत गहरे अर्थों में जुड़ा है। सोचिए, एक ओर बंद कारागार, दूसरी ओर अत्याचार का साम्राज्य, चारों ओर अंधकार, और उसी क्षण एक दिव्य शिशु का जन्म। मानव प्रकृति स्वयं यह घोषणा कर रही हो कि अंधकार की सत्ता कितनी ही प्रबल क्यों न दिखाई दे, प्रकाश का जन्म निश्चित है। कृष्ण केवल देवता नहीं रहे, वे घर घर के लड्डू गोपाल बन गए। किसी माँ के लिए वे उसके नटखट बालक हैं, किसी भक्त के लिए आराध्य हैं, किसी मित्र के लिए सखा हैं, किसी साधक के लिए परमात्मा हैं और किसी जिज्ञासु के लिए जीवन दर्शन के महान शिक्षक। यही श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की सबसे अद्भुत विशेषता है, उनका विराट बहुआयामी स्वरूप। बालकृष्ण की लीलाएँ हमें जीवन में आनंद और सहजता का संदेश देती हैं। माखन की चोरी हो या ग्वाल बालों के साथ उनकी क्रीड़ा, इन प्रसंगों में जीवन की वह सरलता दिखाई देती है जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं पीछे छूटती जा रही है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन केवल गंभीर उत्तरदायित्वों का नाम नहीं है, जीवन में हंसी भी होनी चाहिए, मित्रता भी होनी चाहिए, संगीत भी होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए। और यही कारण है कि कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति में आनंद और अध्यात्म के अद्भुत समन्वय का प्रतीक बन गया। लेकिन वही बालकृष्ण आगे चलकर अत्याचार के विरुद्ध खड़े होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। धर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं है, धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय और कर्तव्य के पक्ष में खड़े होना। यदि हमारे सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और हम सब कुछ जानते हुए भी मौन रहें तो केवल स्वयं को धर्मनिष्ठ मान लेना पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सक्रिय धर्म की प्रेरणा देता है। ऐसा धर्म जो अन्याय का प्रतिकार करे, ऐसा धर्म जो निर्बल की रक्षा करे, ऐसा धर्म जो लोक मंगल का मार्ग प्रशस्त करे। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का एक अत्यंत भावपूर्ण पक्ष है

की मित्रता। सुदामा और कृष्ण की मित्रता भारतीय संस्कृति में आज भी आदरपूर्वक स्मरण की जाती है। एक ओर द्वारका के वैभवशाली कृष्ण, दूसरी ओर निर्धन सुदामा। परंतु कृष्ण के लिए मित्रता में न धन का भेद था, न पद का, न प्रतिष्ठा का। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चे संबंध किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि विश्वास, आत्मीयता और प्रेम पर टिके होते हैं। आज जब संबंधों को भी अनेक बार लाभ और सुविधा के तराजू पर तोला जाने लगा है, तब कृष्ण सुदामा की मित्रता हमें संबंधों की वास्तविक गरिमा का स्मरण कराती है। श्री कृष्ण के जीवन का सबसे महान पक्ष है उनका गीता उपदेश। उन्होंने अर्जुन को कर्म का संदेश दिया, कर्म करते रहो, अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, फल की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को कमजोर मत पड़ने दो। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज का मनुष्य भी भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का कर्म योग हमें सिखाता है, अपने प्रयास को श्रेष्ठ बनाइए, परिणाम को लेकर अनावश्यक भय मत पालिए। यदि विद्यार्थी अपने अध्ययन में पूरी निष्ठा लगाए, शिक्षक अपने शिक्षण में पूर्ण समर्पण रखे, कर्मचारी अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करें और प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे, तो कर्म स्वयं साधना बन सकता है। प्रश्न यह है कि हजारों वर्ष पूर्व का कृष्ण आज हमारे जीवन में कहाँ है? कृष्ण हमारे प्रत्येक उस निर्णय में जहाँ हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। जब हम सत्य का साथ देते हैं, वहाँ कृष्ण हैं। जब हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते, वहाँ कृष्ण हैं। जब हम किसी पीड़ित के प्रति संवेदना रखते हैं, वहाँ कृष्ण हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों में भी विवेक नहीं खोते, वहाँ कृष्ण हैं। कृष्ण केवल हमें पूजा की वस्तु बनकर नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले मार्गदर्शक के रूप में दिखाई देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती, किंतु परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में अवश्य होता है। जन्माष्टमी पर हम मंदिरों में दीप जलाते हैं, घर सजाते हैं, बाल गोपाल को पालने में झुलाते हैं, भजन गाते हैं, उपवास रखते, मध्य रात्रि में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं। यह सब हमारी आस्था का सुंदर स्वरूप है। लेकिन क्या जन्माष्टमी का अर्थ केवल इतना ही है? शायद नहीं। जन्माष्टमी हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी देती है। हमारे भीतर भी कभी क्रोध का अंधकार छा जाता है, कभी अहंकार हमें घेर लेता है, कभी ईर्ष्या हमारे मन को अशांत कर देती है, कभी लोभ हमारी विवेक बुद्धि को ढक लेता है। ऐसे में आवश्यक है कि हमारे भीतर भी सत्य, करुणा, प्रेम, विवेक और कर्तव्य का जन्म हो। यही वास्तविक जन्माष्टमी है। कृष्ण का जन्म केवल मथुरा के कारागार में हुआ था, ऐसा मानना पर्याप्त नहीं। कृष्ण का जन्म तब भी होता है जब किसी मनुष्य के भीतर सत्य के लिए खड़े होने का साहस जन्म लेता है। कृष्ण का जन्म तब भी होता है जब स्वार्थ के स्थान पर सेवा की भावना जन्म लेती है। कृष्ण का जन्म तब होता है जब घृणा के स्थान पर प्रेम जन्म लेता है। कृष्ण का जन्म तब होता है जब मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और समस्त मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करने का संकल्प लेता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए श्री कृष्ण का जीवन विशेष रूप से प्रेरणादायी है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, ज्ञान प्राप्त करो लेकिन ज्ञान के साथ विवेक भी रखो, सफलता प्राप्त करो लेकिन सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखो, मित्र बनाओ लेकिन मित्रता में निष्ठा रखो, शक्ति प्राप्त करो लेकिन उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करो, और सबसे बढ़कर अपने कर्तव्य से कभी विमुख मत हो। उनका संदेश है कि जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, दुविधाएँ आएंगी, कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन मनुष्य को अपने विवेक और कर्तव्य का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इस जन्माष्टमी पर हम केवल उत्सव न मनाएं, बल्कि एक संकल्प भी लें। हम सत्य का साथ देंगे, अन्याय का विरोध करेंगे, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों के प्रति स्नेह और करुणा रखेंगे, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनेंगे और अपने जीवन में प्रेम, शांति तथा सद्भाव को स्थान देंगे। क्योंकि श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश किसी एक स्थान, किसी एक समुदाय अथवा किसी एक युग तक सीमित नहीं है। उनका संदेश सार्वभौमिक है। कर्म का संदेश, धर्म का संदेश, प्रेम का संदेश, विवेक का संदेश और लोक मंगल का संदेश। जब जब जीवन में अंधकार दिखाई दे, हमें उस कारागार की रात्रि को स्मरण करना चाहिए जहाँ अंधकार के बीच कृष्ण का जन्म हुआ था। जब जब हम दुविधा में पड़े, हमें कुरुक्षेत्र के उस रथ को स्मरण करना चाहिए जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का मार्ग दिखाया था। जब जब हमारे बीच अहंकार जन्म ले, हमें सुदामा की मित्रता स्मरण करनी चाहिए। और जब

0: हमारा मन निराश हो, हमें कृष्ण की बांसुरी की वह मधुर कल्पना करनी चाहिए जो हमें जीवन में आशा, प्रेम और आनंद का संदेश देती है। आइए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करें और अपने अंतर्मन में सत्य, प्रेम तथा सद्भाव का दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि कृष्ण केवल एक नाम नहीं, एक चेतना है। कृष्ण केवल एक कथा नहीं, एक जीवन दर्शन है। कृष्ण केवल एक आराध्य नहीं, एक प्रेरणा है। और शायद इसीलिए भारतीय जनमानस आज भी पूरे प्रेम और श्रद्धा से पुकार उठता है, जय श्री कृष्ण।
1: तो भैया रो, अभी अपन ने सुनी कृष्ण जन्माष्टमी पर वार्ता, जब अंधकार के बीच जन्मा प्रकाश, और वार्ता कर रही थी श्रीमती अनीता चौधरी। और देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें अनीता चौधरी बहन ने बताई कि जब अंधकार में भगवान कृष्ण ने जन्म लो। तो भैया जीवन में ऐसे ही, अपने जीवन में भी कई बार ऐसे मौका आते हैं जब लगता है कि अब क्या करें, मन निराश होता है, तो उस समय कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी बातें हैं कि उनकी जन्म की परिस्थिति से लेके और उनको पूरा जीवन काल है, पूरा जीवन दर्शन, गीता के उनको उपदेश कि कर्म करो फल की इच्छा ना करें, और सत्य के मार्ग पर चलो, और समय को देख के अपने निर्णय ले वो, है ना। कितनी बड़ी बातें हैं भैया, और निश्चित है कि आज के ही पवित्र दिना अपन इन सब बातों को समझें और इन्हें अपने जीवन में उतारें। कार्यक्रम का अपन आगे बढ़ाएं, उसे पहले सुना जो संदेश।

और भैया रो देखो एक बात अपन खा और दिमाग में रखना है कि जीवन जो है भैया संघर्ष से परिपूर्ण है। कोनो भी अपन महान व्यक्ति को जीवन ले लो भैया, हर व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी असफलताएं, बड़े बड़े संघर्ष देखो को मिलते हैं, तभी जाके भैया व्यक्ति महान बनते है। तो जब असफलता को समय होवे, निराशा को दौर होवे, तब अपन का भगवान कृष्ण से जो ही संदेश मिलता है कि नहीं, जीवन में अगर हम कर्म कर रहे हैं, भले हमारा काम कितनी छोटो हो और चाहे बड़ो हो भैया, कर्म जरूर करना है। और जब अच्छे कर्म अपन करें भैया, तो ऊ को फल मिलवे से को अपन कहीं दुनिया में नहीं रोक सकते। और जब फल मिलवे से नहीं रोकते, तो भैया एक बात को अपन को ध्यान और रखना है, वो ध्यान रखना है कि भैया जब अपन कोनो काम धाम करते हैं और अपनी आमदनी बढ़त है, तो आमदनी बढ़े के बाद अपन का पैसा रुपयन की बचत करने हैं। बचत भैया बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं है कि बचत जौन है वही बढ़त होते, और बचत बस एक बात पर निर्भर करते हैं कि भैया पैसा बचा के घर में नहीं रखने हैं। वे पैसा रुपया अपन का कहाँ रखने हैं? वे पैसा रुपया अपन कहाँ, जो अपन ने बैंक में खाते खुलवाए हैं या पोस्ट ऑफिस में अपने खाते खुले हैं, उतने रखने भैया। उसे कहा होते एक तो अपना पैसा सुरक्षित है और संगे संगे अपन का ब्याज भी मिले थे। सो कहते नहीं है कि आम के आम भैया गुठलियन के दाम आए, तो अपन का बचत करने हैं। और ऐसी बचत करने हैं पानी की, ऐसी बचत करने अपन का बिजली की। देखो भैया जितनी इनकी बचत हुई है उतनी इनकी बढ़त होते है, चाहे पानी होवे और चाहे बिजली होवे। और ऐसी पैसे रुपया है भैया जो अपन ने बचत कर ली, वही बचत भैया गाँव अपन का काम देते हैं। तो अपन का बचत करने, ऐसी बचत डीजल पेट्रोल की करने भैया, जितने अपन का लगते हैं कि ज़रूरी नहीं है, पैदल चल सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, तो भैया होते अपन पैदल जाएं, साइकिल से चलें। उसमें देखो एक तो डीजल पेट्रोल बचत है, और ऊ के लाने जो अपने पैसे रुपया खर्च होते हैं भैया, उनकी भी बचत होते है, और संगे संगे अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ना। तो ये बात का अपन का बिल्कुल दिमाग से गठिया लेने हैं कि जो भी बचत हो सके वह बचत भैया करना है, क्योंकि बचत ही बढ़त है। जो ना हो कि भैया अपनी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा अपन का बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और जो ही बात अपने घर की बहुएं बिटियन को सिखाने हैं, जो ही बात अपने लड़का बिटिया इनको भैया समझाना है। और जब लड़का बिटियन की बात आते भैया, तो एक बात की ध्यान और रखना है कि उनकी पढ़ाई लिखाई पे कोनो कोर कसर अपन का नहीं छोड़ने है। कहे कि जो उनको भविष्य है, जो उनको आगे दुनिया उन्हें देखने हैं या दुनिया में जो

भी उन्हें करने हैं वो उनकी आज की पढ़ाई लिखाई पे शामिल है भैया। और देखो आज को जमाना है कैसे बहुत परिवर्तनशील है, तकनीकी को जमाना है भैया, अपन देख रहे हैं तनक में दुनिया में कितने नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई। AI की बातें अपन देख रहे हैं भैया, देख कर रहे खुद अपन प्रयोग कर रहे हैं भैया है। तो अपन को ध्यान रखना है कि जैसे जमाने को परिवर्तन है वैसे ही परिवर्तन अपन का अपने काम के स्वरूप में करने हैं, और वैसे ही परिवर्तन अपने बाल गोपाल का समझाने हैं कि उन्हें अपनी, हाँ ऐसा नहीं करने के बहुत उन पर अपन दबाव देवें, दबाव नहीं देने, उनकी जो इच्छा होए उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें अपन का जो भी विषय भी ले वो चाहते हैं भी दिलवा के, लेकिन उ में भी निपुण बन में, कहते नहीं भैया जी काम में भी अपन निपुण होते हैं फिर वो काम में दुनिया में अपन का आगे बढ़े से को नहीं रोक सकते। तो ये बात को अपन पूरा पूरा ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जन्माष्टमी की भैया सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ सब भैया बहन का, और एक ही संगे संगे अपन चलती भी रही सुनते हैं एक और जो लोकगीत भगवान कृष्ण से जुड़ो, और ये गा रहे हैं दामोदर शर्मा भैया।

ऊधो तू कहाँ, जींजा को कांटो लगे वो ही जाने रे। क्या नौनी बात की भैया, बिल्कुल मन तो ऐसो होगो कछु कह नहीं सकते। सब भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रताप है भैया। गोपियन की बात हो रही की से ऊधो से है भाई, समझाने की जाखो कांटो लगे वो ही जाने रे भैया। इतनो सुंदर वर्णन, आहा आज के दिना बस कछु कहीं नहीं जा सकते। बतकाओ करे को मन तो भैया बहुत है, लेकिन अब ब्यारों की बिरियाँ हैं और अंगाऊंग अपन फिर मिले हैं। सो आज्ञा दो अपने भैया विवेक का, एक बार फिर सब अपने भैया बहन का कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: प्रमोद काले जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: प्रमोद जी। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आज एक और बड़ी सफलता हासिल की है और इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है, जो कि बहुत ही खास क्षेत्रों में हमारी मदद करेगा, जैसे कि कृषि और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। आज हम इस बात करते हैं तो अंतरिक्ष क्षेत्र हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है, जिसमें भारत पूरी तरह से लगा हुआ है कि हम इसको एक बड़ा आकार देंगे, अंतरिक्ष व्यवस्था को बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाएंगे और अंतरिक्ष क्षेत्र को लगातार विस्तारित करेंगे, जिसमें निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी कर सकता है। इन सभी को आप किस तरह से देखते हैं आज के समय में?
3: बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आज का जो छोड़ा गया वो सफल हो गया है। अभी उपग्रह जब उसकी कक्षा में जाके पहुंचेगा तब पता चलेगा किस तरीके से वो चल रहा है, मगर ये लॉन्च व्हीकल के लिए, GSLV लॉन्च व्हीकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। अभी आगे जाकर देखना होगा कि हम किस तरीके से और भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए स्टेट में एक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बनाया था, उसी तरह से सभी स्टेट्स में हर एक जगह पर, जब जहां भी सहज हो ऐसी जगह पर, एक स्पेस के लिए काम करने वाला

0: का क्लस्टर होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो हम देख रहे हैं कि स्पेस के लिए जो भी कुछ काम करते हैं, ऐसी लगभग 450 से 480 तक की एक अंदर इंडस्ट्रीज है जो इसमें भाग ले रही है, और उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। और ये करने के लिए ऐसे क्लस्टर जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जहां भी कुछ स्पेस के लिए काम होता है तो उनके लिए इसका जो टेस्ट एंड इवेल्युएशन होता है उसके लिए सब पूर्ण साधन नहीं होते हैं। तो ऐसे क्लस्टर बनाए कि जहाँ कुछ गवर्नमेंट की मदद से, इंडस्ट्रीज की मदद से ऐसे क्षेत्र बन जाए कि जहाँ कोई भी जाकर अपनी जो भी कुछ सामग्री बनाई हो उसका टेस्टिंग कर सके।
1: प्रमोद जी, अगर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को हम थोड़ा विस्तार से देखें, गहराई से देखें, तो हमें ये नजर आता है कि पिछले एक दशक में यानी कि 10-12 साल में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप की संख्या एक से बढ़कर 450 के आसपास तक पहुंच गई है, और लगभग $9 अरब कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो भी इतना पहुंच चुका है। तो ये जो तकनीकी क्षमता में बढ़ोतरी है तो हमें वैश्विक पैमाने पर कहीं आगे लेकर के जा रही है, तो ये सफलता आप भारत के नजरिए से किस तरह से आंकते हैं?
0: ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जो स्टार्टअप से उन्होंने काम तो चालू किया है, मगर उनका जो काम है वो सफल होने के लिए मैंने अभी जैसे कहा कि ऐसे क्लस्टर्स बनाने चाहिए। आज हम सिर्फ एक जगह से, श्रीहरिकोटा आइलैंड और सतीश धवन स्पेस सेंटर से उपग्रह छोड़ते हैं। दूसरा जो उपग्रह छोड़ने के लिए जो स्टेशन बना रहा है तमिलनाडु में, वो भी अभी थोड़ी दिन के बाद चालू हो जाएगा। तो मुझे खातरी है कि जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो वहां से हम लॉन्च कर सकते हैं। अगर आज देखें तो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की भी बहुत जरूरी है, और वो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी इसरो ने डेवलप की थी वो इंडस्ट्री को ट्रांसफर हो गई है। इसी तरह से हमारे जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को दे दी गई है।
1: जी
0: अभी ये इस साल में ही विक्रम 1 जो स्काई रूट ये इंडस्ट्री ने बनाया था वो सफलतापूर्वक कक्षा में उसने जो सैटेलाइट छोड़े हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और मुझे खातरी है कि ऐसे काम करने वाले जो और भी दो वो आगे जाकर इस तरीके का काम कर सकेगा, और इसरो जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए ये सब लोगों की मदद होगी।
1: जी प्रमोद जी, सरकार ने निजी कंपनियों को अनुमति दी है और अंतरिक्ष क्षेत्र नियामक संस्था तथा अंतरिक्ष विभाग की जो कमर्शियल भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है कि जिससे कि सभी को इस क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हो, और ऐसे समय में जब लगातार हम इसमें निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, लगभग मार्च 2026 तक $618 मिलियन का निवेश इसमें हुआ निजी क्षेत्र से, ये सफलता आपको कैसी लगती है?
0: ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इतने सब लोगों ने और इतने से पैसे खर्च करके वो आगे जा रहे हैं। इसको सफल होने के लिए उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया है इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, नई पॉलिसीज बनाई है, और ये पॉलिसी का जो उपयोग करके जो कुछ आगे करना होगा तो इसके लिए हमारे जो एजुकेशनल क्षेत्र है, जो यूनिवर्सिटीज है, वहां भी इस तरीके का काम और होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हमें ये सब काम करने के लिए लोगों की भी बहुत जरूरी पड़ेगी, और इंजीनियरों और बाकी सब लोगों की।
1: प्रमोद जी, विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है। जनवरी 2026 तक ऐसे प्रक्षेपणों की संख्या लगभग 400 तक पहुंच चुकी है, और हमारे लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी एक तरह से रहती है। तो ये जो हमारी कम लागत में अधिक प्रक्षेपण करने की संख्या है, हमारी तकनीक है, आधारभूत ढांचा है, ये हमारी क्षमताओं को किस तरह से प्रदर्शित करता है वैश्विक स्तर पर?
0: तो 2025 को मेरे ख्याल से दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक सबसे भारी, सबसे वजनदार ऐसा एक अमेरिकन उपग्रह हमने यहाँ से लॉन्च किया था LVM-3 का उपयोग करके। उसी तरह निसार जो सैटेलाइट है उसका भी लॉन्च किया है। मुझे खातरी है कि इस तरीके के काम हम जो अगर और भी कर सके तो बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और
1: प्रमोद जी, चंद्रयान की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1 से चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज और चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 4 में चंद्रमा से नमूने लाने की योजना भी बनाई गई है, ये जो भारत के बढ़ते हुए कदम हैं, ये आपको कहाँ तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में कहाँ तक अपने कदम रखेगा, किस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे?
0: उम्मीद है कि ये जो चंद्रयान 4 का जो कार्य है वो बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाएगा, और चंद्रमा के जो ऊपर के जो नमूने है वो लेके आएंगे। इसी तरह हम आगे जाकर गगनयान भी जो प्रक्षेपण होगा जिसमें क्रू नहीं होगा, मगर फिर वो 2027 भी हो जाएगा और उसके बाद जो गगनयान अच्छी तरह से चले तो उसके बाद जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी अच्छी तरह से काम कर सकेगा आगे जाकर। और ऐसा जो अंतरिक्ष स्टेशन जब हम बना सकेंगे तो उसके लिए ये सब

0: प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो सबका सहभाग होना चाहिए।
1: गगनयान कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका कुल परिव्यय बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए किया गया है और पहला मानव रहित परीक्षण अभियान 2026 की चौथी तिमाही और मानव युक्त अभियान 2027 तक लक्षित है। तो ये हमारे लिए उड़ान के दो महत्वपूर्ण विषय है जो हमें ये दिखाते हैं कि तय समय सीमा में काम करना और सुरक्षा मानकों के साथ में काम करना। तो सरकार की इस व्यापकता यानी कि सरकार की ये जो उपलब्धियां हैं, सरकार जिस तरह से इस दिशा में काम कर रही है, तो गगनयान अभियान हमें कहां तक पहुंचाएगा, क्या सफलता हमारे लिए इसकी मायने रखती है?
0: एक गगनयान जो ऐसा है कि कोई भी आज बच्चे के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है। क्यों बनना है? तो उसको देखना है कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। सिर्फ इतना नहीं, मगर ये जो काम हम कर सके तो आगे जाकर इसका उपयोग हम मेडिसिन के लिए, वहां कुछ सामग्री बनाने के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे भी जीरो ग्रेविटी में जाकर किस तरीके से हम कोई भी मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि गगनयान जैसा प्रयोग हम करें और आगे जाकर जितने बच्चे हैं उनके सबके जो सपने होंगे वो हम पूरे कर सकेंगे।
1: स्पेडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेडेक्स के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में स्वचालित डॉकिंग की, अनडॉकिंग की क्षमता प्रदर्शित की है, जो चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या भारत अब अंतरिक्ष में उपग्रहों की मरम्मत, ईंधन भरने, नमूने स्थानांतरित करने और अंतरिक्ष यात्रियों के स्थानांतरण जैसी जटिल गतिविधियों की तकनीक विकसित करने की स्थिति में है? इन तकनीकों को भविष्य में भारत के द्वारा दूसरे देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है?
0: कर सकते हैं, मगर इसके लिए ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि जैसे कि आज हमारा एक उपग्रह है ऊपर, उसको जाके मिलकर उसमें ईंधन भरना है, तो ये दोनों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जो एक प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल से हम आगे जा सकते हैं। और ऐसे प्रोटोकॉल बाकी सब देशों के साथ भी जो हो सके, तो एक दूसरे को किसी का भी जो उपग्रह हो उसको जाके हम डॉक कर सके और जो अगर ईंधन भरना है तो भर सकेंगे। मगर इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके लिए बाकी की और भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होने चाहिए कि जैसे उनके उपग्रह उसका एक्सेस मिलना चाहिए। तो इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए और भी हमें करार करने पड़ेंगे और आगे जाकर हमें काम करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। अब प्रमोद जी, मंगलयान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे निर्धारित 6 महीने के कार्यकाल के मुकाबले 8 वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाला यान था, जबकि आदित्य L1 और एक्सपोसेट ने सूर्य तथा दूरस्थ खगोलीय पिंडों के अध्ययन में भारत की क्षमताएं बढ़ा दी है। तो गहरे अंतरिक्ष अभियान में इस तरह की जो हमारी व्यवस्था की जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो तकनीकी रूप से काफी ये जटिल होते हैं, तो इस तरह के अभियानों को प्राथमिकता देना हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह की दिशा तय करेगा? खासतौर पे अगर एजुकेशन की फील्ड से हम बात करते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगी?
0: एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, ये दोनों के लिए बात की आपने, उसकी बहुत जरूरत है कि आगे जाकर जो हमें देखना है कि मार्स पे जीवित व्यवस्था थी कि नहीं, क्यों वो चली गई, वीनस में क्या हो रहा है, तो ये सब के लिए उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए एजुकेशनल फील्ड रिसर्च करने वाले जो है उनको ये संसाधन हम दे सकते हैं, जैसे ने कहा कि मंगलयान है, आदित्य है, एक्सपोसेट है। तो अब देखते हैं कि हबल टेलीस्कोप ने कैसा काम किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैसा काम किया, अभी जो नया जो है ग्रीस रोमन टेलीस्कोप है, तो इन सब का उपयोग करके बाकी के देशों से जिस तरीके से काम हो रहा है, उसी तरह हम अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट है, अपने यहाँ के इंजीनियर है, उनके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं।
1: प्रमोद जी, अभी हाल फिलहाल की देखें कि बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटी हैं, तो ऐसे में ये समझना और जानना बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि पृथ्वी का अवलोकन और बेहतर तरीके से हो ताकि हम अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकें। तो पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लगभग 1200 करोड़ रुपए के निजी निवेश प्रतिबद्धता के साथ पहला निजी स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह विकसित किया जा रहा है। तो ये जो भागीदारी की जा रही है इसमें मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन, संचार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो कैसे ये सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगी?
0: आज का ही जो उपग्रह छोड़ा है उसे हम देखते हैं, तो जो इतना जो रेजोल्यूशन मिल जाए कि कोई 50 मीटर का रेजोल्यूशन होगा और हम पूरी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। आज हम अपने जो मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है, इनसैट सैटेलाइट के जो है, वहां से हम देख सकते हैं आज के मौसम क्या है, किस तरीके से ये क्लाउड्स मूव हो रहे, साइक्लोन कहाँ है, तो उसके लिए और भी ज्यादा जानकारी हम मिला सकते हैं। और ये जो आज का जो उपग्रह है वो उसका उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम जब पूरी तरह से निगरानी कर सके तो हमें अभी तो पता चलता है कि कहाँ कुछ हो गया है, मगर वो हो जाने के पहले उसके जो कुछ संकेत हम

0: मिला सके तो उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हो जा सके।
1: प्रमोद जी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारे पास श्रीहरिकोटा और तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में प्रक्षेपण स्थल हैं, तो इनसे

0: दौरान में जो कोई छोटा उपग्रह होता है तो उसको हम दूसरे लॉन्च व्हीकल जो प्रक्षेपण क्षेत्र है वहां से लॉन्च कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही ख्याल आता है कि दोनों जगह से हम आगे जाकर और भी ज्यादा उपग्रह छोड़ सकते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
1: जी
0: जो इसरो ने बनाया था, इसी तरीके जो विक्रम वन जो ये लोगों ने बनाया है, ये स्काई रूट वन, वो हम वहां से पूरी तरह से लॉन्च कर सकते हैं।
1: प्रमोद जी, भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने और उससे पहले हिस्से को 2028 तक अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखता है, तो इतने बड़े अंतरिक्ष ढांचे का निर्माण, रखरखाव, अंतरिक्ष यात्रियों के आवागमन, लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के लिए भारत व्यवस्था किस तरह से आपको समझ में आती है आज के समय में?
0: सबसे महत्वपूर्ण उसका जो प्रोपेलेंट है के लिए जो ईंधन लगता है, ये हम यहाँ ही बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। एक 90 से 95% का काम हम स्वदेशी पूरी तरह से कर सकते हैं। मुझे पूरी खातरी है कि इसी तरीके से हम आगे जाकर और भी काम कर सकेंगे। मैंने अभी पहले ही जिक्र किया था कि कुछ बात ऐसी होती कि जिसे टाइम सर करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्ट करना लगता है, और वो अच्छी तरह हो सकता है कि अगर जो हम उनके उपग्रह से लॉन्च करते हैं तो वो हमें फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, इसी तरह हमें भी कुछ बाहर से खरीदना पड़ सकता है। ये तो पूरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो गई।
1: प्रमोद काले जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक के गाए ये तेरा घर ये मेरा घर फिल्म के गीत से। इब्राहिम अश्क के बोल और संगीतकार आनंद मिलिंद।
2: ये आकाश।

अब सुनिए रंगरेज़ फिल्म का गीत। इसे गाया है वाजिद खान ने, समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

पेंटर बाबू, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, जगदीश खन्ना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत मीरा का मोहन फिल्म से, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और साथियों की, बोल इंदीभर के संगीतकार अरुण पौडवाल।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
5: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
6: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
10: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
11: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
12: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
11: And recovery efforts in the country.
4: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1200

0: 287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
5: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज
7: आकाशवाणी।
6: आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।
7: The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervor across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries, including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
8: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
7: Italian Prime Minister Giorgia Meloni today thanked Prime Minister Narendra Modi for his wishes on a government becoming the longest serving in the history of the Italian Republic. In a social media post, Ms. Meloni expressed confidence that India and Italy will continue to strengthen the bond between the two continents and work together to develop the India-Middle East-Europe economic corridor. He said that the ties between the two nations are

0: said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty entered the fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark's Kim Astrup and Anders Skarup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in Shenzhen this evening. Earlier, the Indian pair defeated Francis Thomas Jr. Popov and Christoph Popov 21-17, 22-24, 21-9 last night to make it to the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का तीन रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खोज किया जा रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वजारत खारजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है, ताहम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का तीन रोजा फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स रुकन ममालिक और शराकतदार मुल्कों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सरबराहान और सीनियर अदालती हुक्काम शरीक हैं। फोरम के तहत भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान समेत कई मुल्कों के अदालती वफूद के सरबराहान के साथ दो तरफा मीटिंगें की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फोरम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अदालती तआवुन को मजबूत बनाने, अदालतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तेज रफ्तार अदालती अमल के जरिए अवाम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तकम करने और मुख्तलिफ ममालिक के बेहतरीन कानूनी तरीकों पर बातचीत की गई। तीन रोजा इस फोरम ने मुख्तलिफ ममालिक की अदलिया को इंसाफ की फराहमी, बैनुल अक्वामी तनाज़ात के हल, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मसाइल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम किया। इसके अलावा इस फोरम के जरिए मुख्तलिफ ममालिक के अदलिया के सरबराहान ने अपने अपने ख्यालात और तजुर्बात का भी एक दूसरे से इश्तराक किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी हुकूमत के इटली की तारीख में सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा मेलोनी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत और इटली बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे और भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहतरमा मेलोनी का यह रद्द अमल वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से उन्हें इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया है। ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم مودی نے کہا کہ یہ کامیابی اطالوی عوام کے ان کی قیادت

0: खुराक के पैकेट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा अफराद को सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मकामात समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई मकामात पर कल शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कृष्ण से जुड़ी मिठाइयाँ और खाने पीने की दूसरी चीज़ें भी भगवान कृष्ण को पेश की जाती हैं। इस मौके पर दिन भर और देर रात तक मजहबी गीत बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल और गणपति आर मंदिर से लाल चौक तक जुलूस निकाला। मर्दों, खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल अकीदतमंदों ने मजहबी नारे लगाते हुए और भजन गाते हुए तकरीबात में शिरकत की। बेल्जियम के वज़ीर आज़म बार्ट डी वेयर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ बहरी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल फरवरी में समंदर और बंदरगाहों के शोबे से वाबस्ता बेल्जियम के एक आला सतही वफ्द को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबे में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो आज भारत यूरोप यूनियन आज़ाद तजारती समझौते पर मुंबई में मुनदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेयर से मुलाकात की और शहरी हवाबाजी के शोबे में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने रास्त फजाई कनेक्टिविटी, आला कदर वाले फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए फजाई कार्गो और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जैसे शोबों में इश्तराक पर भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F-17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की एक गिरां कदर कामयाबी और मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा करार दिया। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीरे आज़म इस मौके पर इस्तेमा से भी खिताब करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क के आला तालीमी इदारों में एक मुमताज़ नाम है और कॉमर्स, माशियात और मैनेजमेंट के शोबों में तालीम और तहकीक का अहम मरकज़ है। अर्ज़ियाती साइंसेस के मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत तलबा पर मरकूज़ प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने, उनमें बुनियादी साइंसी सोच पैदा करने और नौजवान जहनों को अर्थ सिस्टम साइंसेस मुताला कराने की तरगीब देने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रियासतों को अदालती अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल को अपने मुतालिका सर्विस कवानीन में तरमीम करके रिटायरमेंट की उम्र बाज़ाबता तौर पर 62 साल करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने यह भी वाजे किया है कि 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले अदालती अफसरान को 62 साल तक खिदमात जारी रखने की इजाज़त देने से पहले मुतालिका हाईकोर्ट की जानिब से उनकी कारकर्दगी और मजूनीत का जायजा लिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलोचिस्तान के जियारत और सराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेज पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी हलकार मारे गए और दिगर कई जख्मी हुए। BLA के दावे ऐसे वक्त सामने आए हैं जब पूरे बलोचिस्तान में मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से हमलों में फिलहाल इजाफा हो गया है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में मुल्क गिर कार्रवाई की और ऑपरेशन चक्र 6 के तहत 3 अफराद को हिरासत में लिया। मुल्क में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में मुसलसल इजाफे के मसले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए CBI ने मुल्क की 20 रियासतों में 89 मकामात पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के अशदार गली इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। श्रीनगर में वाकई चिनार कॉर्प्स के एक तर्जमान ने बताया कि भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका खुफिया इत्तला की बुनियाद पर यह कार्रवाई शुरू की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोतो, कहा जाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है, और जब यही युवा खेल के मैदान में अपने हुनर, अनुशासन और जज्बे का प्रदर्शन करते हैं तो देश का गौरव और भी बढ़ जाता है।

आज भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो बस इन प्रतिभाओं को पहचानने, उन्हें निखारने और सही अवसर प्रदान करने की। इस दिशा में परिवार और समाज के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यालय और महाविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि युवा प्रतिभाओं को आकार देने का भी महत्वपूर्ण मंच है।

खेल मैदान, प्रशिक्षित कोच, आधुनिक सुविधाएं, प्रतियोगिताओं के अवसर और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, ये सभी किसी उभरते खिलाड़ी के सपनों को उड़ान दे सकते हैं। तो आखिर शैक्षणिक संस्थान खेल प्रतिभाओं को किस तरह पहचान और तराशते हैं और हमारे कॉलेज एवं विश्वविद्यालय किस तरह देश के लिए भविष्य के चैंपियन तैयार करते हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है पंकज कुमार जैन। आप एलएनसीटी कॉलेज में स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है।

0: पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सर।
0: पंकज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल की अगर हम बात करें तो कॉलेज में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं?
1: भोपाल में तो सर इस समय स्पोर्ट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जितने भी कॉलेजेस हैं, जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं
0: जी,
1: वो खेलों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो तो अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग करके खिलाड़ियों को आगे बढ़ा ही रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट संस्थाएं भी बहुत स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं। और आजकल तो खिलाड़ियों का समय आ रहा है तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संस्था अपने अपने स्तर पर अच्छे अच्छे प्रयास कर रही है और खेलों को बढ़ावा तो मिल ही रहा है।
0: जी जी जी।

0: सरकार भी काफी प्रयासरत है और खेलों को एक नई दिशा प्रदान की जा रही है। पंकज जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कॉलेजों में जो विद्यार्थी है उनकी खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए कॉलेज में क्या कोई व्यवस्था है, क्या कोई नियमित ट्रायल या प्रतिभा चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, मध्य प्रदेश इस समय खेलों में बहुत अग्रणी स्थिति में आ रहा है और इसका श्रेय सभी को जाता है जो भी प्रयास कर रहे हैं। और कॉलेज लेवल पे ऐसा होता है सर, जब स्कूल से बच्चा खेल कर आगे आता है तो जब उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो वो अपना परिचय देता है और उसके बाद उसको पूरे अवसर दिए जाते हैं। कॉलेजेस में जैसे कि शुरू में कॉलेज की कॉम्पिटिशन होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की, डिविजन लेवल की, उसके बाद स्टेट कॉम्पिटिशन करवा के यूनिवर्सिटी की टीमें आगे भेजी जाती हैं, तो इससे खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच मिलता है।
0: जी, और कोई प्रक्रिया भी है जिससे कि एक अच्छा मंच मिल सके विद्यार्थियों को?
1: हाँ जी बिल्कुल है ना सर, जो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद भारत सरकार ने पॉलिसी बना कर रखी कि जो शुरू की 8 टीमें होती हैं या जो 16 सर्विसेज खिलाड़ी होते हैं उनको खेलो इंडिया में जाने का अवसर मिलता है। और खेलो इंडिया तो एक बहुत बड़ा मंच है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जिससे कि प्रतिभावान जो भी खिलाड़ी है उनका चयन किया जाता है और उनको आगे की नई दिशा भी प्रदान की जाती है। पंकज जी, खेलों में रुचि रखने वाले जैसे कोई भी विद्यार्थी है तो नियमित प्रशिक्षण के लिए क्या कॉलेज में किसी तरह की कोई व्यवस्था है?
1: हाँ सर, हर कॉलेज में खेलों के पूरे पर्याप्त संसाधन रहते हैं, खेल मैदान रहते हैं, प्रशिक्षक रहते हैं। आजकल तो सर कंपटीशन का दौर है तो हर संस्था अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, जो खिलाड़ी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कोचेस होते हैं और उन्हीं कोचेस के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलने जाते हैं, कॉलेज में कॉम्पिटिशन होती है, जैसे भोपाल लेवल की कोई कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें सभी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, तो अभी जब कॉलेज आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज का नाम भी होता है और बच्चों को प्रयास रहता है कि आगे बढ़ें और वो पारंगत हो अपने खेल में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो हमारे विश्वविद्यालय है या कॉलेजेस हैं उनमें सार्थक प्रयास किया जा रहा है कि खिलाड़ियों का न सिर्फ चयन हो बल्कि वह प्रदेश स्तर और राष्ट्र स्तर पर भी अपना नाम रोशन कर सके। अब जैसे सुविधाओं की बात करें तो कॉलेज में विद्यार्थियों को किन किन खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है?
1: सर लगभग जो भी ओलंपिक खेल हैं उन सभी के तो खेल मैदान रहते ही हैं सर, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारे खेल तो लगभग हर कॉलेज में रहते ही हैं, है ना। कॉलेज के बाद में खिलाड़ियों को, जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, उनके क्लासेस के बाद में हम उनको शाम का जो सेशन रहता है उसमें हम अलग अलग हमारे यहाँ कोचेज हैं जो कि खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं और प्रयास किया जाता है कि वो आगे बढ़ें ताकि हमारी टीम अच्छी बने, और अच्छी टीम बनेगी सर तो हमारा नाम भी होगा और बच्चों को भी फायदा मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी पहल है जो कॉलेजेस के द्वारा इस समय की जा रही है। अभी हमने बात करी सुविधाओं की, तो जो अभी खेल उपकरण है या आवश्यक संसाधन है उसको बेहतर बनाने के लिए संस्थान की ओर से क्या किसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
1: हाँ सर, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अलग अलग नए इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं। पुराने समय तो चला गया सर, जो मिल्खा सिंह नंगे पैर ही दौड़ लिए थे, तो अब तो कई चीज़ें ऐसी नई नई आ गई हैं, कंपनियां खुद आके सर कॉलेज में विजिट करती हैं, मैनेजमेंट से मिलती हैं और वो अच्छे अच्छे संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है। जिम वगैरह भी हर कॉलेज में होता है जो कि पहली पाठशाला है खिलाड़ी को आगे बढ़ने की, तो संसाधन तो सर खुद कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और अच्छी अच्छी सुविधाएं हर संस्था प्रदान करने की कोशिश करती है। सरकार भी उसमें पूरा सहयोग प्रदान करती है, जैसे हमारे खेल एवं कल्याण विभाग है वहां से भी सभी संस्थाओं को पूरा सहयोग मिलता है ताकि खिलाड़ी आगे बढ़े।
0: जी जी जी, पंकज जी, क्या विद्यार्थियों को अंतर विद्यालय, विश्वविद्यालय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाता है?
1: हाँ जी सर बिल्कुल, हम तो खिलाड़ियों को पूरा अवसर प्रदान करते हैं सर। हमारे यहाँ किसी भी क्षेत्र में खिलाड़ी को जहाँ तक वो खिलाड़ी खेलना चाहता है हम भेजने का पूरा प्रयास करते हैं। और जैसे कि जब बच्चा कॉलेज से बाहर निकलता है खेलने के लिए उसको TADA दिया जाता है, उसको किट प्रदान की जाती है, ट्रैक सूट, जो भी उसका ट्रेवलिंग चार्जेस सब उसका अनाउंस सब दिया जाता है। और जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
0: जी,
1: ये भारत सरकार की पॉलिसी भी है कि जो भी खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं IU में तो उसको 25,000, 15,000 और 10,000 की राशि दी जाती है। लेकिन ये किसी अमाउंट में निश्चित नहीं है, खिलाड़ी जितना परफॉर्म करता है तो हर संस्था का वो रहता है कि उस खिलाड़ी को अवसर प्रदान करें। यूनिवर्सिटी के बाद में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी चालू हो गया, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जब बच्चा खेलने जाता है तो हमारे से 2-3 बच्चे पिछले 2 सालों में खेलने गए हैं, तो चाइना और जर्मनी गए थे, तो पूरा खर्चा सर हम लोगों ने उठाया था।
0: जी जी जी,
1: तो खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सभी आजकल खुले दिल से प्रयास कर रहे हैं, और
0: क्योंकि
1: जब तक अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो सर सरकार के साथ साथ प्राइवेट संस्थान भी पूरा उनको मदद करते हैं
0: जी।

0: निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी विश्व पटल पर इसी तरह के प्रयासों से भारत अपनी एक अमिट छाप छोड़ेगा और हमें निश्चित तौर पर बहुत अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। अब जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन की आपने बात करी, जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्या कोई कॉलेज प्रशासन और स्पोर्ट्स विभाग के बीच भी किसी तरह का कोई समन्वय है?
1: हाँ सर, खेल विभाग संपर्क में रहता है कि यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी हैं वो अपने उसमें लेने के लिए, और वो भी उनको मदद करते हैं, और जो एकेडमीज चल रही हैं वो भी हमसे कांटेक्ट में रहते हैं कि ताकि उनके एकेडमी के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ कोई शिक्षा लेना चाहते हैं तो हमारे मैनेजमेंट से बात करके उनको निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको फीस उनकी माफ़ की जाती है। तो इस तरीके के भी कई काम होते हैं
0: जी जी जी
1: खिलाड़ियों को
0: जी
1: आगे बढ़ाने के लिए, तो शासन और संस्थाएं मिलकर भी इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
0: जी और खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए क्या किया जा रहा है?
1: बहुत अच्छी बात की आपने। खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए कुछ प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स होती हैं जिसमें कुछ इनामी राशि रखी जाती है जिससे खिलाड़ी मोटिवेट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिवीज़न लेवल के, स्टेट लेवल की जो कॉम्पिटिशन होती हैं उसमें खिलाड़ी अपना परफॉर्म करता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है, और
0: जी
1: उसके बाद जो प्रोत्साहन राशि है कि उसको ये रहता है कि मैं आगे जाके मेडल लेके आऊँगा तो मुझे इतनी राशि मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी। तो सर इस सब चीज़ों के कारण से खिलाड़ी अपने आप में मोटिवेट होता है, और सभी में संस्थाएं और सरकार मिलकर वर्क करती हैं।
0: और जैसे कि आजकल हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आज के समय में जो हम बात करते हैं फिटनेस, जैसे कि सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो विद्यार्थियों को फिट और सक्रिय रखने के लिए संस्थाओं द्वारा कौन कौन सी गतिविधियाँ करवाई जा रही है?
1: संस्थाओं में जैसे अब हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ प्रति शनिवार को स्पोर्ट्स डे होता है, तो वहाँ पर खिलाड़ियों को, पूरे ही खिलाड़ियों को जो भी वो खेलना चाहते हैं उनको खेलने के अवसर दिए जाते हैं। तो सभी लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे प्रॉपर खेलें, प्रॉपर उनके कोचेज रहते हैं जो उनको प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं वो लंच में खेल सकते हैं और कॉलेज के पहले खेल सकते हैं, उनको बसें की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर वो कॉलेज के बाद में रुक रहे हैं तो उनको बस सुविधा प्रदान की जाती है, और खेलों के ग्राउंड उनके लिए हैं। तो सब मिलकर प्रयास करते हैं सर, और जिम वगैरह तो सब खिलाड़ियों को जाना ही चाहिए सर।
0: जी। और क्या कॉलेजों में प्रशिक्षकों या पूर्व खिलाड़ियों को भी बुलाकर प्रशिक्षण या मार्गदर्शन दिया जाता है?
1: हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे कि कोई कंपटीशन करवाते हैं तो उसमें हम पहले से कोचेस को बुला लेते हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, वो उनको टिप्स देते हैं ताकि खिलाड़ी आगे बढ़ते।
0: जी अब जैसे आपने बात करी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो उनको सहायता प्रदान की जाती है उनको उससे मदद मिलती है और वो किसी भी खेल में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं?
1: हाँ सर बिल्कुल, अगर किसी की इच्छा है खेलने की और वो पैसे के कारण से नहीं खेल पा रहा है और उसकी कमी अगर कोई संस्था दूर कर रही है सर, तो वो तो जी जान से मेहनत करेगा और वो आगे बढ़ता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़े हैं और उनको संसाधन के कारण से और उन्होंने पूरी मेहनत की है, वो अपना सब कुछ झोंक देते हैं उसमें, उसके बाद वो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ते हैं।
0: जी। क्या समय समय पर कॉलेज अपने विद्यार्थियों को खेलों में करियर और अवसरों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है?
1: हाँ सर, ये तो आजकल तो गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाना है, तो हमारे यहाँ तो सर कई इंजीनियर्स ओलंपिक, फैकल्टी ओलंपियाड, ये सब होते रहते हैं, तो खिलाड़ियों को बराबर खेलने का अवसर मिलता है। हमारे जो पूरे ग्रुप के जो भी कॉलेजेस हैं मिलके हम लोग इवेंट करवाते हैं ताकि हमारी फैकल्टी भी फिट रहें और हमारे बच्चे भी फिट रहें। तो ये प्रयास रहता है हमारे मैनेजमेंट का कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आए। तो निश्चित रूप से सर पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश भी बहुत पदक तालिका में ऊंचाई पर आ रहा है। तो ये सब सबके मिलके जो प्रयास हो रहे हैं उसके कारण से सब संभव हो पा रहा है।
0: निश्चित तौर पर कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन युवाओं को जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
1: सर मैं बोलना चाहूँगा आकाशवाणी के माध्यम से कि सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत तन मन के साथ ग्राउंड पर अपना प्रयास करें आगे बढ़ने का। खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड पे आना ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी मेहनत करें, बहुत कंपटीशन का दौर है, आपको सब सुविधा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरे आपको सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत करें।
0: जी पंकज जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: केवल मैदान तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उचित मार्गदर्शन देना और लगातार आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत, होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेल जगत, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत चांदनी फिल्म से है, आशा भोसले और विनोद राठौड़ ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं शिव हरी।

और लीजिए, अब सुनिए वाजिद अली की आवाज़ में शब्बीर अहमद का लिखा, अमजद नदीम का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है मुंबई मिरर।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज़ों में सिद्धार्थ गरिमा का लिखा, संजय लीला भंसाली का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है रामलीला।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर पहला गीत है सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, आप सभी ने फरमाइश भेजी है कवाई सालपुरा 12 राजस्थान से। अगली फरमाइश है ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक ने। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है नदिया के पार फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं जसपाल सिंह और हेमलता की। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

कृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर से फरमाइश करते हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, रजिया, जुनैद, अलीना, आयत और मुआज मंसूरी। जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, रादिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, सायमा खान, मुश्तबा खान, आफिया खान, रऊफ और शहीद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी ने फरमाइश की है बंजारन फिल्म के गीत की। इसे गाया है अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ ने। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत चंबल की कसम फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल साहिर के और संगीतकार खय्याम। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेवा खरगोन से डॉक्टर तिलकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अजीत वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है चंबल की कसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगला गीत खामोशी फिल्म से है। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, गुलजार ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं हेमंत कुमार। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। घंटाघर चौक खंडवा से फरमाइश की है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र पंचोलिया और सन्मति पंचोलिया ने। आप सभी की फरमाइश पर पेश है खामोशी फिल्म का गीत।

और आपके फरमाइश कार्यक्रम का आखिरी गीत इज्जतदार फिल्म से, आवाज़ें हैं मोहम्मद अज़ीज़ और अलका याग्निक की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से फरमाइश की है सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर ने, और बहादुरा नागपुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ज़िला बुरहानपुर मोहत से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी तड़वी, रोज़मीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनू बाबू, पेरू तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं इज्जतदार फिल्म का गीत।

और इसी के साथ आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए पंडित गणपति भट्ट का ख्याल गायन, राग है बागेश्री।

अभी आपने पंडित गणपति भट्ट का ख्याल गायन सुना। राग था बागेश्री। संगतकार थे तबले पर सरवत हुसैन और सारंगी पर अब्दुल लतीफ खान। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता

और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The National Testing Agency, NTA, has released admit cards for candidates appearing for UGC NET June 2026 in English, Commerce and Sociology on the 9th and 10th of this month. Candidates can download their admit cards from ugcnet.ta.nic.in using their login credentials. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter their fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark's Kim Estrup and Anders Kvarup Rasmussen in Shenzhen this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे एक विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको आकाशवाणी के मथुरा केंद्र के सौजन्य से सुनवा रहे हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थल और श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण जन्मस्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। आइए सजीव प्रसारण के लिए मथुरा चलते हैं।
2: कृष्ण की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्षदायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्रीयुत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधु अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी लवणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम क्षण है। मेरो मन आनंद भयो ब्रज राज ही याचन आयो अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रिजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदा नंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की कड़ी जो है महोत्सव चारों ओर है। परमानंद आज यहाँ साक्षात बरसता हुआ उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आपकी रात याद दिलाती है द्वापर युग की उस विलक्षण और अलौकिक घटना की।

0: आज के दर्शन के लिए, परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की, जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे, एक बार पुनः ब्रज की धरा धर्म होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन, हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत, विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है। रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा माँ योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
1: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से बोल रहा हूँ। आज के मंगल उत्सव में आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। धन्य धन्य ब्रजभूमि जहाँ प्रगटे वनवारी। जी हाँ श्रोताओं, यह ब्रज धरा वंदनीय है, पावन मथुरा नगरी अभिनंदनीय है, जहाँ पर हमारे ब्रजराज लाडले कृष्ण कन्हैया ने यहाँ इस धरा पर जन्म लिया। ब्रजराज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में आज यह मथुरा नगरी, यह द्वारकाधीश मंदिर दिव्यता और भव्यता की अद्भुत संगम बना हुआ है। और इस संगम में

0: देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। मथुरा मोक्षदायिनी नगरी है और इस मोक्षदायिनी नगरी में पहुंच चुके हैं लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु। बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ बड़े ही अनुशासित ढंग से भागवत भवन में प्रवेश करते हैं और मुख्य विग्रह के सामने आकर ठिठकते हैं। मुख्य भवन में जो विग्रह हैं उन पर जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो अपलक हम उन्हें निहारते रह सकते हैं। आज परमात्मा का जो विशेष श्रृंगार है वो अद्भुत और अंगूठा है। प्रतिवर्ष की तरह जैसे भगवान की पोशाक होती है वो अनूठी है, इस बार भगवान ने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं और इस वस्त्र को पंच रत्नी पोशाक नाम दिया गया है। ये पंच रत्न उस पर जरी और काम के साथ हीरे जवाहरात माणिक्य के साथ अंकन किए गए हैं। वो पंच रत्न हैं जो समुद्र मंथन में निकले हुए थे, श्री हरि विष्णु के पास आए थे और उनका संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कामधेनु गाय, पांचजन्य शंख, अमृत कलश, एरावत हाथी जो कि श्री हरि विष्णु को मिला था, उन्होंने बाद में इंद्र के मांगने पर उन्हें दे दिया था, और कल्प वृक्ष अंकित हैं। इतनी सुंदर मनमोहक छवि है। भगवान ने मुकुट जो धारण किया है वो अद्भुत और अनूठा है। स्वर्ण जड़ित इस मुकुट में अनेकों माणिक्य हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और वो सब अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। इतरा इसलिए नहीं रहे हैं कि उनमें हीरे जवाहरात और माणिक्य लगे हुए हैं, बल्कि इसलिए इतरा रहे हैं कि हमारे परमात्मा ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया है। भगवान ने कंठाहार पहन रखा है, हाथों में चूड़ा है, कमर में करधनी है। उनके आभूषणों के साथ उनकी सज्जा देखने लायक है। जब दृष्टि पड़ती है तो अपलक लोग देखते रह जाते हैं। राधा रानी की आंखों से बरसती हुई करुणा मानो सभी को सम्मोहित कर ले रही है। उनके पीतांबर वस्त्रों को देखकर लोगों के आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। जो सुंदर सजावट की गई है वो भगवान के पुष्प बंगले की है, जिसे कलहंस पुष्प बंगले का नाम दिया गया है। सुंदर हंस बने हुए हैं जो कि श्वेत रंग के पुष्पों से बनाए गए हैं और गुलाबी रंग के पुष्पों से उनके पंख हैं। नीले रंग के मयूरों की आकृति है। श्वेत, गुलाबी और हरे रंग के पुष्प और पत्तियों का सुंदर समावेश किया गया है। एक ऐसी अद्भुत चित्ताकर्षक झांकी है जिसे देखते हुए श्रद्धालु यहां पर ठिठक जाते हैं और ये वातावरण पूरी मथुरा में छाया हुआ है। मथुरा जो कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा, भक्ति और आस्था का एक केंद्र है, वो स्वागत करने के लिए तैयार है। समस्त द्वारों पर जो तोरण द्वार बने हैं वो मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं। मथुरा के समस्त चौराहों पर रेशमी वस्त्रों, गुब्बारों, विद्युत लड़ियों और खिलौनों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रवेश करते ही श्रद्धालु अपलक निहारते रहते हैं अपने कान्हा की इस धरती पर जहां पर उन्होंने लीलाएं की थी। मथुरा के प्रवेश द्वारों पर की गई सजावट सभी का स्वागत कर रही है। स्वागत तो यहाँ पर भागवत भवन में श्रद्धालुओं का भी हो रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं तालियां बजाते हुए, श्री हरि बोल के नारों से गुंजायमान कर रखा है और तालियां बजा के आते हैं। बस एक ही अभिलाषा होती है कि अपने प्रभु की छवि को किस तरह निहार लें, उस मनोरम छवि को सदैव के लिए मानस पटल पर अंकित करना चाहते हैं। ठिठकते हैं, लेकिन जो सेवायत हैं, जो हमारे यहाँ व्यवस्था में लगे लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनकी श्रद्धा आहत ना हो धीरे से कंधे पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ने का एक इशारा कर देते हैं। बाहर आज बारिश भी कुछ देर पहले बहुत तेज हुई थी, ऐसा लगता था कि द्वापर का वो दृश्य जीवंत हो गया जब परमात्मा ने यहाँ पर जन्म लिया था। श्रद्धालुओं का अगर मथुरा में प्रवेश होता है तो जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं। और ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुक्त श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी। एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादरी शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इसमें भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है।

बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे। और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पल आए, जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का, अपनी लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं। और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है, बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है, उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः तीन मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है, जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन्य कंस का कारागार, हर ने लिया जहाँ अवतार, ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धा तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, झान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ, और उसके बाद सुबह 8 बजे से पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का, और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया, और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ। और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प लिया गया। इसके बाद मंगलार्चन, वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिचड़ों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई। और उसके आप से थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित हैं। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है। और जो सामान्यतः जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं। और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से, और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, उनसे जगह जगह सजाया गया है। और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए, उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियाँ बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था, आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य, शायद अद्भुत प्रदृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। और चूंकि कान्हा की नगरी है, तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है, जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनुनय विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। उनसे विनती की जा रही है, हे लाला साथ को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ, हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा, और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहाँ जहाँ भी

0: यहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण, आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड का, दीप माला ऐसे जगाती है। और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में, हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई, बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा, सभी भक्ति भावना में लीन, चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों, तोरणों, रंग बिरंगी झालरों, कुमकुमों, बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गिक द्वार हों। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हों। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां, और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी, जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है, उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल्हावे जोई जोई कछु गावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है, लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं, उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झलकार जैसी प्रतीत होती हैं। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी हैं, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
2: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ, हम जिधर देख रहे हैं चारों ओर श्रद्धालु, अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है, और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई, वैसे वैसे जय घोष से, गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है इस उल्लास के

0: वर्णन करना, हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारिकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारिकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फर चंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है, तो यहाँ पर भक्तों का जो समूह है, इनका नृत्य देखने लायक है। और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं, कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है, लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं। और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं, कभी मोर पंख को देखते हैं, और कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा, क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम, बरसाना, दिव्य महाराज की पावन धरा, वृंदावन की छवि आज अलौकिक है। और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के इस अवसर पर, जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवाएं तो धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है, कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है। कुछ सेवाएं इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातःकाल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है, धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू, ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है, उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है। और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दधि दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ। और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है, तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता, तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है। और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी, हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
1: बहुत बढ़ती हुई व्यग्रता, उत्कंठा, उल्लास, मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में, जो कि जहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहाँ पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है, और यहाँ पर जय जयकार के नारे भगवान के, लोग अब उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख को लें। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक 7 पुत्रों को मारा गया, पर जिसे भगवान बचाए, जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था, पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, संकादि ऋषि स्तुति करने लगे, वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव। देवकी वासुदेव विस्मित माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी संतान के इस दिव्य रूप की आभा सहने की नेत्रों में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वासुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी जो थी उफान पर थी, वो धीमे धीमे, और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं। चारों ओर जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे, उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल जी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
2: अब वह घड़ी निकट है जब लाला का अवतार होने वाला है। अवतार भावनाओं का चरम शीर्ष होता है, भक्ति का चरम शीर्ष होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का अत्यंत विष्णु सर्व गुहाशयः आविरासीत यथा प्राच्यम दिश इंदु इव पुष्कलः, जिसका भावार्थ है मध्य रात्रि के उस दिव्य समय में जब भगवान जनार्दन का प्राकट्य हुआ, तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसी बीच मंदिर के पट खुल गए हैं, पर्दा हट गया है और श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के दर्शन सबको सुलभ हो रहे हैं। और हम इसी के साथ ही माँ भागवत के उस क्षण पर चलते हैं जब माता देवकी और पिता वसुदेव ने अपने दिव्य बालक के दर्शन किए, तो उन्होंने देखा कि वह साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। भागवत कहता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युदायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम। इसका भावार्थ है, वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान थे, वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। देव का हृदय आनंद आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की, वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत में माता देवकी की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में आती है, उपसंहर विश्वात्मन अदह रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। इसका भावार्थ है, हे विश्वात्मा अपने इस अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप को अब छिपा लीजिए। शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित यह दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सामान्य बालक के रूप में अपनी लीला प्रारंभ करें। यही वह अद्भुत क्षण है जहां परम सत्ता ने प्रेम के लिए स्वयं को सीमित कर लिया। जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वही माता पिता की गोद में आने के लिए तैयार हो गए। यही भगवान और भक्त के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के साथ मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कृष्ण जी के।
0: धन्यवाद आशुतोष शुक्ला जी, क्या ही सुंदर पल, अद्भुत घड़ी, और जिस घड़ी की प्रतीक्षा सभी को थी, और इस समय द्वारकाधीश मंदिर के ये पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की अपलक निहारने की ये जो कला, ये जो दृष्टि और वो जो कन्हैया को अपने नेत्रों में भरने की ये जो ललक है, श्रद्धालु इस समय राजाधिराज द्वारकाधीश की अनुपम छवि को एकटक अपलक होकर निहारे जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, नफीरी की ध्वनि, क्या आज के इस धन्य यशोदा भाग्य त्योहारो जिन ऐसा सुत जायो। आज द्वारकाधीश प्रभु का अलौकिक श्रृंगार हम देख रहे हैं ठीक सामने। इस श्रृंगार को भारी श्रृंगार कहा जाता है और यहाँ आभूषण और अलंकारों से सुसज्जित द्वारका

0: अधीश अवर्णनीय छवि, भक्तजन मंत्र मुग्ध आकर्षित हुए जा रहे हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ पर मुक्ताहार, मणियों की मालाएं, कलाइयों में कंगन, सुंदर करधनी युक्त आभा पर बस अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। जो जहाँ खड़ा है वहीं पर ठगासा रह गया है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनमोहन के साथ मनमोहक भी लग रहे हैं और संभवतः यही वह श्रृंगार है, यही वह सौंदर्य है, यही वह आकर्षण रहा होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वसनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज लोकमानस, जनमानस का उत्साह, उमंग और श्रद्धालुओं में इस समय बहुत तीव्रता से हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत आगे जाऊं और अपने कन्हैया को, अपने द्वारकाधीश को, उनके बगल में विराजित रुक्मणी जी को यहां जाकर के निकट से देख लूं, दर्शन कर लूं, या मुरली मनोहर की अद्भुत छवि उसका दर्शन कर लूं। और कभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी सामने पर्दे पर नाचते हुए मोरों की छवि देख रहे हैं, और लेकिन पुनः सभी की दृष्टि अपने अपने द्वारकाधीश के चरणों में लगी हुई है। और पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है, चरणों से ऊपर की ओर जैसे जैसे दर्शन किए जाएं, कुंडल की छवि अद्भुत है, क्या ही सुंदर ये मुकुट की छवि। आप जिस अंग को देखें, जिस जगह से देखें, मेरे कन्हैया को यहाँ पर देखना, और ये देखते देखते यहाँ पर आतुरता से बाट जो रहे बाहर जो श्रद्धालु खड़े थे, अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और धन्य है ये ब्रजवासी, और धन्य है ये सेवायत। आप अद्भुत देखेंगे, जिसको भी किसी को कष्ट ना हो, जो यहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ सबसे यही कहते हैं, राधे राधे राधे, जरा आगे चलो। और ये ब्रज में जैसे जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, इसकी गूंज के संग ये ब्रजवासी आगे आ रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं। और किसी को असुविधा ना हो, इसके लिए हमारे ये जो व्यवस्था में लगे हुए सेवक हैं, इनका भी कहना क्या, इनको धन्यवाद। और इस समय चलते हैं बहुत सुंदर झांकी के लिए, वहां पर भागवत भवन में श्री कृष्ण जन्म स्थान से क्या दृश्य, क्या मनोरम छवि है, इसके लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन।
1: अद्भुत है हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की ये छटा। ये संपूर्ण अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तपुरिया ही नहीं, स्वर्ग से देवता भी लालायित होकर इस दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए एकत्र हो गए हैं। और सबकी दृष्टि इस समय पूरे ब्रजमंडल पर है, जहां हर घर में कृष्ण जन्म के आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी हैं, क्योंकि वो क्षण अत्यंत निकट आ गया है जब परमात्मा एक बार पुनः अवतरित होंगे प्रतीक रूप में इस धराधाम पर, हम सभी को आश्वस्त करने के लिए। यहाँ भागवत भवन के जो विग्रह है, वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है, वो बाईं तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विग्रह के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है, क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धराधाम पर आ रहे थे तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रजमंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धराधाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर पूजन की तैयारियां चल चुकी हैं, जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद प्राकट्य के बाद भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप से बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ड्रोन के द्वारा बाहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ काशी और अयोध्या से भी भगवान के लिए विभिन्न पोशाक और उनके साथ लिए प्रसाद आया है वो भी चढ़ेगा, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट्य पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी हैं, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है। बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कई प्रसंग हैं, तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है, तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए हैं क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए। उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिटकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते हैं, स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को, जहां आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहां पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजे भी क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखवा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद देश दीपक जी। भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे जय श्री कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है, जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा है उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं। और जो भक्तों का आने का क्रम था, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं और आज इस विशेष मौके पर उस पल को कैसे गवा दें। सुरक्षा प्रहरी सेवाएं तो ने बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि भक्तों का आने क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा है और ये पट सब बंद है जो यहाँ पर सेवाएं हैं, पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं और जो काष्ठ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे दो मोर नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री घड़ियां हैं जिनको इंतजार करना हर एक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक निहार रहे हैं कि कब वो घड़ी आए और जब वो लाला का

0: प्रथम दर्शन करें। प्राकट्योत्सव के बाद जब लाला बाहर आते हैं उस घड़ी को देखने के लिए, निहारने के लिए सभी एकजुट, और ये कपाट खोल दिए गए हैं लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है। भक्तों में उत्साह है, अचानक जैसे राधे का जय घोष हो रहा है और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे, अचानक उनके भजन गाने में ढोल झांझ मजीरा मृदंग, और यह पर्दा खुल चुका है। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर एक रजत कमल है, यंत्र चालित एकदम धीरे धीरे उसकी पंखड़ियाँ खुलती हुई, क्रमशः पंखड़ियाँ खुल रही हैं और ये लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहाँ पर जो दूसरे सेवा आए थे वो आरती कर रहे हैं और इसमें प्रथम कल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और सुगंधित द्रव्य भी वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है और ढोल झांझ मजीरे मृदंग शंख इनका संदेश और अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए, जैसे जन है, सभी के मोबाइल ऊपर उठे हुए हैं और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने मोहल्ले में, टोले में, अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़ियाँ खुल चुकी हैं, वहाँ पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान हैं, उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सकें। लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है और इस समय आरती हो रही है और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवायत हैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन व्रत की गई है जिनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। और इस समय जो आरती क्रम है वहाँ पर चल रहा है और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार के यंत्रों से कि जो ढोल मजीरे शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियाँ बिखर रही हैं और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। जो भक्त जहाँ भी हैं ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, आज तो अद्भुत दृश्य है। अचानक भक्तजन उछल उछल नृत्य कर रहे हैं और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सकें। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया, उन पर लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं। और जो कृष्ण के विविध रूप हैं, जो राधे राधे का अभिवादन है, चाहे गीता का पठन पाठन हो, युद्ध भूमि में हो, कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं। और आइए चलते हैं देश दीपक मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
1: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए, जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का। और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है। प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का, उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की

सत्ता का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं। और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूं, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं। और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है, और ये वातावरण सिर्फ यहाँ नहीं, भागवत भवन में नहीं, मथुरा में नहीं, हर घर में नहीं, गोकुल, बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभवामि युगे युगे का जय घोष करने वाले हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है। लाला ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धराधाम पर मेरी उपस्थिति है, तालियां हाथ उठाकर, दोनों हाथों से तालियां बजाकर, करतल ध्वनि करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए एक लय में, एक ताल में, एक धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में हैं, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने हैं, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम भी हैं, सखा भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं और निष्काम कर्म योगी भी हैं। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला है, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है, तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गूढ़ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गूढ़ अर्थों को भी लेके आती हैं। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण, जब चारों ओर अंधेरा होता है और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं, हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धराधाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धूप तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई ओर छोर कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण। अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी, तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है, आत्मा तो कारागार होता है जहां उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है, ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है, और तभी कृष्ण को आप

0: प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उफनती यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उफनती लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर, दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेषनाग की छत्र छाया में जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया, जहां पर एक कामधेनु स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेनु विराजित है जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्धधार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाईं ओर मंच है वहाँ पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियाँ खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। कहीं प्रेमी रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, झूमर चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है। इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद और इन सब के साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती होगी और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती होगी और प्रातः यहाँ पर आनंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी मथुरा नगरी में हर जगह, हर मठ में, मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस समय जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्तजन भजन गा रहे थे उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठा कर रहे हैं और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन हैं, इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक हैं। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालुओं से बात की जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारजनों के साथ में आते हैं और यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए। और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सभी को प्रभु के आगमन की, अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरभि के साथ निशिगंधा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हम और आप मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी।